मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक्सुमत 1948 के आषाढ़ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। 6 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है।

0: और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस।

मुनि याज्ञवल्क्य ने ऋषि भरद्वाज को राम कथा सुनाते हुए पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन किया। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में उन्होंने संक्षेप में कार्तिकेय के जन्म की कथा सुनाई। शिवजी का चरित सुनकर मुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। उस कथा को आगे सुनने की उनकी लालसा और भी बढ़ गई। ये जानकर मुनि याज्ञवल्क्य अतिशय प्रेरित हुए, बोले, शिवजी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं होती उन्हें राम की कृपा भी प्राप्त नहीं होती।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस, स्वर था वाणी जयराम का और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुविचार। मनुष्य को हमेशा यही सोचना चाहिए, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन, जिसमें सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन के स्वर में ये भक्ति गीत।

कार्यक्रम वंदन। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दो कलियां से। इसे आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संकेत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, जिंदगी की जंग जीतनी है तो तूफान के गुजर जाने का इंतजार मत करो, तूफान में कश्ती किनारे लगाने का हौसला रखो।

दोस्तों क्रोध तेज हवा की तरह है, कुछ देर बाद ये ठंडा हो जाता है, लेकिन तब तक कई शाखाएं और पत्ते टूट चुके होते हैं जिन्हें दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता।

दोस्तों, खुश रहने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है।

दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान है, जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। 8 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू।

0: की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के 1 दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश

0: लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रूपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू

0: और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniforms.

0: नित नई जानकारियों और सुरीले गीतों से सजाकर एक नए दिन एक नए अंक के साथ हम हाजिर हैं और इस वक्त आपसे मुखातिब गुलनाज खान
1: और कविता पवार।

0: श्रोताओं, आज साल के छठे महीने का अंतिम दिन 30 जून के आने के साथ ही हम इस साल के आधे सफर को पूरा कर चुके हैं। अब आप विचार कीजिए कि आपके सपने, आपके काम, आपके वादे किस मुकाम पर पहुंचे हैं। अब भी 184 दिन आपके हाथ में हैं उन्हें पूरा करने के लिए। साल 2026 के 181वें अंक को लेकर हमारी नमस्कार की टीम हाजिर है।
1: तो दोस्तों, ट्रांसमिशन पर हमारे साथ हैं पारसपुरी गोस्वामी और चंद्रराम पटेल। कंट्रोल रूम से हमें साथ मिल रहा है प्रवीण कुमार का। और एफएम पर उद्घोषक का है मंजू लुक्कड़। और हमारे साथ हमें आपसे और आपको हमसे जोड़ते हुए पोलाश दास। और इन सभी के साथ मैं कविता पवार
0: और मैं गुलनाज खान, और इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश लामरोड। चलिए श्रोताओं, एक नया दिन हमारी जिंदगी के साथ शुमार हो गया है और एक नए दिन चलते हैं सफर पर आगे। आज का दिन आपका इंतजार कर रहा है, आपके सपने, आपके काम, आपके विचार, आपके इरादे, आपकी शख्सियत और भी बहुत
1: बहुत कुछ जो आपके सुबह को महकाने के प्रयास में है।

0: जिंदगी की राह में आगे बढ़ रहे हैं गीतों के साथ, शब्दों के साथ, और जब भी आप अपने किवाड़ से बाहर निकलते हैं तो यकीनन मुलाकात होती है। कभी आप अपने आप से मिलते हैं, कभी दोस्तों से मिलते हैं, किसी अजनबी से मिलते हैं, कभी रास्ते के गड्ढों से मिलते हैं, किसी मोड़ से गुजरते हैं, और फिर कभी कभी चालान के डर से भी आप इधर उधर चले जाते हैं। कभी आपके लिए ये भी हो जाता है कि वाहन चलाते हुए उनसे मुलाकात हो जाती है और वो चालान लेकर हमारे सामने आ जाते हैं। बहरहाल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मुलाकात जब होती है तो दिल कुछ कहने लगता है,
1: और दिल ये कहता है ना कि तेरे बिना कुछ नहीं भाता मुझे, और तेरे बगैर कुछ नजर नहीं आता मुझे। और जैसी आपने अभी
0: चश्मे की बात तो नहीं कर रही कविता,
1: जो आपने बताया कि हम हमेशा बचते हैं उन लोगों से जो हमारी जिंदगी में मुसीबत पैदा करने वाले होते हैं।
0: हाँ, है कहते भी हैं,
1: और हम मिलना चाहते हैं उन लोगों से जो हमारे जीवन में खुशियां लाना पसंद करते हैं।
0: बिल्कुल, हर इंसान को खुशी,
1: जिनके होठों पर मुस्कान होती है, हमारी निगाहें उनसे जरूर मिलती है और मिलना चाहती भी है, लेकिन वही किसी की पहली निगाह हमें परेशान करती है तो हम उनसे निगाहें बचाने की भी कोशिश करते हैं। सुबह सवेरे का माहौल है, हर घर का अपना मैनेजमेंट है, सभी लोग अपने अपने तरीके से जीना शुरू कर रहे हैं। कहीं अखबार खुला है, चाय की चुस्कियां हैं, तो कहीं शब्दों की सरिता गुलनाज खान और कविता बहा रही है।
0: जी, मैं तो मुस्कुरा रही हूँ, फिलहाल तो मैं मुस्कुरा ही रही हूँ ताकि कविता मेरी तरफ देखते हुए दिन की शुरुआत अच्छी करे, क्योंकि अभी अभी आपने कहा ना कि किसी चेहरे को अगर मुस्कुराते हुए देखो तो अच्छा लगता है, तो बस अब मैं मुस्कुराना ही चाहती हूँ।
1: और एक चीज जो कॉमन नजर आती है हर घर में वो है रेडियो सेट, और उस पर

0: बजते हुए वो गाने जो हमारी और आपकी सुबह को महकाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं और एक नई ऊर्जा जगाते हैं।
1: जी हाँ, तो चलिए शब्दों के साथ में संगीत का तालमेल बिठाते हैं और श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत।

0: खासकर जो जिंदगी में पहली बार हुआ होता है, पहली सफलता, पहली असफलता, पहली ड्राइव, पहला इम्तिहान, पहली मुलाकात, अगर बहुत सुखद रही हो या बहुत दुखद रही हो, तो वो ता जीवन हमारे साथ जुड़ी रहती है और
1: जी,
0: उसका असर।
1: पहली बार की हर बात याद रहती है, और उसमें भी अगर पहला प्यार हो तो कहना ही क्या, पूरा जीवन हमारा उस मोहब्बत की खुशबू से महकता रहता है। और हाँ, जो हमारा पहला असफलता का जो हमने स्वाद चखा होता है, वो भी हमारी ज़िंदगी में हर बार हमें सबक देता है कि देखो ज़रा संभल के।
0: जी, और अगर कुछ अच्छा किया है तो कुछ अच्छा ज़रूर पाओगे, है ना। ये सफलता सिखाती है। तो वहीं कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो पहली पहली बार ज़िंदगी में शुमार होती हैं और जीवन भर वो हमारे साथ चलती हैं, और उसमें होते हैं हमारे अपने रिश्ते, कुछ देखे अनदेखे और कुछ जाने अनजाने, जिसमें से अभी हम उन रिश्तों में जी रहे हैं जो हमारे श्रोताओं के साथ हमसे जुड़ा है।
1: जी हाँ, ये रिश्ते जो हैं वो हमें इतना मज़बूत बनाते हैं। आज जबकि हम बात कर रहे हैं तो कई जाने अनजाने चेहरे हमें सुन रहे हैं, तो
0: बिल्कुल
1: यही हमारे रिश्ते की खूबसूरती है। और जब दिल आशना हो जाता है और किसी से आपको शनासाई हो जाती है, तो
0: जी,
1: फिर दिल में मोहब्बत भी जाग जाती है।
0: और
1: और
0: होठों पर एक नगमा उभर आता है।
1: गा के सुनाइए।
0: पहली पहली बार मोहब्बत की है।

0: तकरीबन 25 मिनट पहले मुस्कुराते हुए चेहरे से मुलाकात हुई, फिर दिल आशना हुआ और फिर पहली पहली बार मोहब्बत हो गई। और रेडियो पर गाने सुनने का आनंद ही कुछ और होता है ना गुलनाज जी।
1: जी
0: वैसे तो
1: बिल्कुल।
0: हम अपने साथ गीतों का जहान लिए फिरते हैं अपने हाथ में मोबाइल के जरिए, लेकिन फिर भी एक इंतज़ार रहता है रेडियो पर जब गाने बजते हैं तो कि अगला गाना कौन सा होगा।
1: जी, और जब मोहब्बत हो जाती है तो उस व्यक्ति को हम उसका नाम ही नहीं, उसका किरदार भी दिल में उतार लेते हैं, और फिर एक दूसरे से पूछते भी हैं कि तेरे दिल में क्या है, कि तुम ही तुम हो। और मोहब्बत इंसान को बहुत कुछ सिखाती भी है, और इस गीत में तो हमने ये भी सुना कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करूं।
0: बिल्कुल, एक वजूद मिलता है, एक अस्तित्व मिलता है, एक पहचान मिलती है जो सारी ही इस गीत में थी, कि हम कुछ भी नहीं होते लेकिन फिर भी बहुत कुछ हो जाते हैं किसी से मिलके। और मिलके चलना तो अपने आप में वैसे भी बहुत बड़ी बात
1: जी, चलिए, तो मेल
0: है।
1: मुलाकातों का सिलसिला बना रहना

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम एक न्यूज ब्रेक के लिए रुकते हैं। 9 बजने वाले हैं, 9:10 पर आपसे फिर मिलेंगे नमस्कार कार्यक्रम में।

0: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। 9 बजने को हैं, कुछ देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी। प्रदेश के राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों के कोर एरिया कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा और प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश की मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं और इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थीं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया था। इसी वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। वन्य जीवों का प्रजनन काल और मॉनसून सत्र शुरू होने के कारण पर्यटन गतिविधियों में बदलाव किया गया है। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में पर्यटक नहीं जा सकेंगे। हालांकि बफर जोन में 2 रूट सैलानियों के लिए खुले रहेंगे। दूसरी ओर सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में आज वर्तमान पर्यटन सत्र का आखिरी दिन है, जिसके चलते वहां बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। और अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता।
1: बीते कई दिनों से देशी विदेशी तथा खास और आम सैलानियों की भारी भीड़ है। आज अंतिम दिन बाघों के दीदार के लिए पर्यटकों की विशेष भीड़ देखी जा रही है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के दिशा निर्देशों तथा मानसून के चलते कल से आगामी 3 माह के लिए प्रमुख भाग जोन नंबर 1 से 5 में पर्यटन पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि पूर्व की भांति जोन नंबर 6 से 10 में पर्यटन चालू रहेगा। अंतिम दिन बाघों के दीदार के लिए आज स्थानीय लोगों की भी विशेष भीड़ रहेगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी संबोधित करेंगे। इस वर्ष सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI इनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस रखी गई है। सम्मेलन में डिजिटल शासन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तकनीकी पहलुओं पर देशभर के विशेषज्ञ मंथन करेंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह देशभर में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। कोटा बूंदी क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए अगले 3 महीनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में जिला प्रशासन

0: और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने और कैमरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की बात कही। इससे पहले श्री बिरला ने श्रीनाथपुरम स्टेडियम में विभिन्न खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित हों, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है।
1: लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते थे और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रास्ता बने और इसके 900 मीटर का ये वॉकवे भी उनके लिए बनाए ताकि खिलाड़ी भी परेशान हो वॉक। और इसी स्टेडियम में सारी सुविधाएं, चाहे आप देखो शानदार रूप से बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, जिम हो, लॉन टेनिस हो, सारी सुविधाएं एक स्टेडियम की एक छत के नीचे, ताकि खिलाड़ी बहुआयामी प्रतिभा से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सकें। आज जिम भी है।
0: राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत चूरू जिले के लिए राज्य वृक्ष खेजड़ी को एक जिला एक वनस्पति के रूप में चयनित किया गया है। उपवन अधिकारी ने बताया कि जिले की विभिन्न पौधशालाओं में इस वर्ष 1.5 लाख से अधिक खेजड़ी और उसकी सह प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर खेजड़ी वाटिकाएं भी बनाई गई हैं।
2: इसके लिए चूरू वन विभाग 1.5 लाख के आसपास खेजड़ी उसकी सह प्रजातियों की पौधे कर रहा है, जिनका वितरण 5 जून से प्रारंभ हो गया है। ये वितरण आमजन व अन्य विभाग के लिए है, उचित रूप है विभागीय योजनाओं के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हमने इसी पंच गौरव योजना के 2026 के अंतर्गत हमने 5 खेजड़ी वाटिकाएं बनाई है, जिन जो कि चूरू, तारानगर, राजगढ़, सरदारसर और रतनगढ़ में।
0: और अब मौसम। प्रदेश में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल है। राज्य में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। औसत तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर कल सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं चूरू और बीकानेर में 42.8, बाड़मेर में 42.1 और जैसलमेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 3-4 दिन अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान हवा में नमी की मात्रा अधिक होने से उमस का असर बना रहेगा। इस बीच राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगामी दिनों में सक्रिय होने के आसार हैं। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में अगले 3-4 दिन गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। प्रदेश के राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्यों के कोर एरिया कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में होगा। और प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा के सूर्य नगरी चैनल और एफएम सन सिटी चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम, नाम है जिसका मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और आज के अंक के साथ आपसे मुखातिब हैं गुलनाज खान और
4: कविता पवार। और दोस्तों, हर दिन एक अपने आप में बहुत सारी घटनाओं को साथ लेकर जन्म लेता है और शाम होते होते बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ जाती हैं। आज के दिन की बात करें 30 तारीख की, तो इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि इस 30 तारीख में क्या क्या कुछ घटित हुआ जिसे हम दोहराते हैं आज के इतिहास में।
3: अठारह में इसी दिन मानवता ने अनोखे संघर्ष का सामना किया था। नियाग्रा जल

0: उत्पाद के उग्र जल से लगभग 170 फीट ऊपर एक पतली रस्सी से इसे पार किया था। एक पैर पर संतुलन बनाते हुए, रस्सी पर बैठते हुए और यहां तक कि उस पर लेटते हुए भी आगे बढ़े थे। इस साहस को अंजाम देने वाले थे जीन फ्रांकोइस ग्रेटविट, एक फ्रांसीसी कलाबाज जो अपने सुनहरे बालों के कारण ब्लोडिन नाम से जाने जाते थे। 5 साल की उम्र में उन्होंने जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण लेना शुरू किया था और महज 6 महीने बाद अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था और आज के दिन इस साहसी काम को अंजाम दिया था।
1: तो दोस्तों 1937 की बात करते हैं। आज ही के दिन दुनिया का पहला इमरजेंसी नंबर 999 लंदन में जारी किया गया था।
0: श्रोताओं, इसे दुनिया की पहली सार्वजनिक आपातकालीन टेलीफोन सेवा माना गया। बाद में यूएस और कनाडा ने 911 नंबर को स्वीकार किया था और भारत में 112 एकीकृत राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है।
1: अब बात करते हैं 30 जून 1938 की। तो आज का ही दिन था जब बच्चों के सबसे पसंदीदा कार्टून चरित्रों में शुमार सुपरमैन पहली बार कॉमिक्स के पन्नों पर नजर आया था और उसके बाद सुपरमैन दुनिया भर के बच्चों का पसंदीदा किरदार बन गया।
0: ४७ में भारत विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल और पंजाब के सीमांकन के लिए बाउंड्री कमीशन यानी सीमा आयोग के सदस्यों की आधिकारिक घोषणा की गई थी आज के दिन।
1: और दोस्तों 1966 में आज ही के दिन अमेरिका में बॉक्सर और एक्टर माइक टायसन का जन्म हुआ था ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में। वे इतिहास में सबसे कम उम्र के हैवीवेट चैंपियन बने।
0: और श्रोताओं, सबसे खास बात यह है कि वे आज भी सबसे कम उम्र के विश्व हैवीवेट खिताब के विजेता बने हुए हैं और WBC यानी वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल खिताब उन्होंने 20 साल की उम्र में जीता था और अपने करियर में उन्होंने तकरीबन 58 मुकाबलों में से 50 मैचों को जीता था।
1: 1966 में आज ही के दिन अमेरिका का पहला महिला संगठन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर विमेन का गठन किया गया था और ये आज ही के दिन वॉशिंगटन DC में हुआ और इसमें इस समय करीब 28 महिला कार्यकर्ताएं रही थी।
0: साल 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का विलय हुआ था आज के दिन। १९९७ में हांगकांग से ब्रिटिश हुकूमत खत्म हुई थी आज के दिन।
1: और सन रहा 2000 का और आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिका में डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता दी थी।
0: सन 2008 में रविकांत, उमाशंकर चौधरी और विमल चंद्र पांडे को संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया था। सन 2002 में ब्राजील ने जर्मनी को 2-0 से हराकर फुटबॉल के विश्व कप पर कब्जा किया था। सन 2006 में फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने अर्जेंटीना को हराया था और सन 2005 में ब्राजील ने कन्फेडरेशन फुटबॉल कप जीता था आज के दिन।
1: और सन 2007 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से शांति रक्षण विभाग के बंटवारे का निर्णय किया था और 2008 में आज ही के दिन रॉबर्ट मुगावे ने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी।
0: और श्रोताओं, विश्व स्तर पर बात करें तो कांगो में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है आज के दिन, जब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने राजा लियोपोल्ड द्वितीय के क्रूर औपनिवेशिक शासन के दशकों बाद बेल्जियम से 1960 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी।

ग्वाटेमाला में सशस्त्र सेना दिवस मनाया जा रहा है। 1871 में हुई लिबरल क्रांति की याद में राष्ट्रीय सशस्त्र बलों के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। वहीं सूडान में 1989 में किए गए तख्तापलट की याद में आज क्रांति दिवस मनाया जा रहा है, जबकि इसराइल में आज के दिन नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1948 में आज ही के दिन हाइफा बंदरगाह पर इसराइल ने कब्जा किया था और 1993 से ये दिन मनाना शुरू हुआ था। और श्रोताओं, विश्व भर में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खास दिन मनाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस आज मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीयता दिवस मनाया जा रहा है और हमारे देश में होल क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। इन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये गीत।

0: गुलाज जी, इतिहास के पन्नों को टटोलें तो कई सारी ऐसे आंदोलन, कई सारी लड़ाइयां लड़ी गईं, कई सारी क्रांतियां आई, लेकिन उसके पीछे का कारण अगर देखा जाए तो हर जगह एक ही सामने आया था, वो था आत्मसम्मान और अपने अस्तित्व को बनाए रखने की लड़ाई थी। और ऐसी ही एक क्रांति का जिक्र आज हम कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, जिसे हूल क्रांति दिवस के रूप में हम मनाते हैं आज ही के दिन।
1: जी श्रोताओं, भारतीय इतिहास में स्वाधीनता संग्राम की पहली लड़ाई वैसे तो सन 1857 में मानी जाती है, लेकिन इससे पहले भी झारखंड के संथाल परगना में संथाल हूल और संथाल विद्रोह के द्वारा अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। वहां पर एक क्रांति ने जन्म लिया था और उसे हूल क्रांति का नाम दिया गया था।

0: 1955 की बात है। वर्तमान साहिबगंज जिले के भटनाडीह गांव से ये शुरू हुआ था और इस विद्रोह के मौके पर घोषणा की गई थी, करो या मरो,
1: जी,
0: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
1: ये विद्रोह भले ही संथाल हुल हो, परंतु संथाल परगना के सारे ही जितने भी गरीबों और शोषितों द्वारा ये शोषकों और अंग्रेजों और उसके कर्मचारियों के विरुद्ध एक स्वतंत्र आंदोलन था। और इस जन आंदोलन के नायक भगनाडीह निवासी भूमिहीन और ग्राम प्रधान चुन्नी मांडी के चार पुत्र सिद्धू, कानू, चांद, भैरव थे, और इनके साथ इनकी दो बहनें भी थी, फूलो और जानो।
0: देखिए, समाज के उत्थान के लिए अगर एक परिवार भी आगे बढ़ता है तो वो जो एक कदम है वो क्रांति का रूप ले सकता है। हुल क्रांति से हमें ये सबक मिलता है। श्रोताओं, आंदोलन को कार्य रूप देने के लिए परंपरागत शस्त्रों से लैस होकर 30 जून 1855 को तकरीबन 400 गांवों के लगभग 50,000 आदिवासी लोग पहुंचे थे और आंदोलन का सूत्रपात हुआ था।
1: और ये जो विद्रोह है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की औपनिवेशिक नीतियों, जमींदारों और बाहरी व्यापारियों जिन्हें दीकू कहा जाता था, उनके द्वारा किए जा रहे भयंकर आर्थिक शोषण और जमीन हड़पने और अत्याचार के खिलाफ था दोस्तों। और इस विद्रोह ने अंग्रेजों की नींव हिला दी और बाद में इसे दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मार्शल लॉ भी लागू किया गया था, जिसमें लगभग 20,000 से ज्यादा संथाल वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को आदिवासियों की रक्षा के लिए संथाल परगना क्षेत्र बनाना पड़ा।
0: जी, और वे जो शहीद हो गए थे वे आज भारतीय इतिहास में अपना नाम अमिट छोड़ गए हैं। और आज जो कुछ भी हमारे पास है वो किसी की मेहनत का फल है, इसे हमें हमेशा याद
1: याद
0: रखना
1: रखना
0: होगा।
1: चाहिए।

0: ऐसे गीतों को सुनकर एक नज़ारा ताज़ा तरीन हो जाता है दिलो दिमाग में। जब हम रात को छत पर सोकर आसमान को निहारते थे, वहाँ चांद तारे और बहुत सारे चमकते हुए सितारे दिखते थे, और वो जो रोशनी, वो जो चमक है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुखद एहसास जोड़ जाती थी हमारे भीतर।
1: कभी
0: बड़ा
1: कभी ये
0: सुहावना
1: भी
0: लगता था।
1: दिल करता था कि इन तारों के पार भी एक दुनिया होगी,
0: जी, और
1: कैसी
0: कई
1: होती है
0: सारे
1: वो
0: सवाल।
1: दुनिया। जी
0: और उसे देखने की जिज्ञासा भी होती थी, और आसमान निहारना सच में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही आंखों को भाता है। पर सौर मंडल में ऐसे कई सारे पिंड तैर रहे हैं जिन्हें हम आमतौर पर देख नहीं पाते, और वो होते हैं क्षुद्र ग्रह, जिसे अंग्रेजी में एस्टेरॉयड भी कहते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह यानी छोटे हैं, पर इनका इतिहास बहुत बड़ा है।
1: जी हाँ श्रोताओं, और इनके बारे में ही जानकारी देने के लिए आज का खास दिन मनाया जाता है। 30 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्र ग्रह के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज के दिन को चिन्हित किया। सन 2017 से अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की घोषणा की थी। दरअसल श्रोताओं, 30 जून 1908 को रूस की तुंगसुका नदी के पास बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। इसे क्षुद्र ग्रह के चलते धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता है। इस कारण क्षुद्र ग्रह के खतरे को लेकर और उसके प्रति जागरूकता के लिए 30 जून को क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई क्षुद्र ग्रहों का आकार इतना बड़ा होता है कि वे पृथ्वी को भी नष्ट कर सकते हैं। एक क्षुद्र ग्रह कंकड़ के दाने से लेकर 600 मील की चौड़ाई तक का हो सकता है।
0: इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि हर दिन को मनाने का एक न एक उद्देश्य होता है, और इसका उद्देश्य है कि पृथ्वी से क्षुद्र ग्रहों के टकराने के खतरों, उनके बचाव के उपायों और अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। और इसका उद्देश्य ये भी है कि क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव से होने वाले विनाश और बचाव की तैयारियों पर चर्चा करने, ग्रह रक्षा और संभावित खतरों से निपटने के लिए नासा जैसे अंतरिक्ष संगठनों का विकसित की जा रही तकनीकों में ध्यान देना और साथ देना है, और पृथ्वी के करीब आने वाले अंतरिक्ष पिंडों की खोज करके उसकी ट्रैकिंग को बढ़ावा देना है, ताकि इसके नुकसान से बचा जा सके।
1: श्रोताओं, क्षुद्र ग्रह बड़े पैमाने पर सैकड़ों किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह से के टूटकर पृथ्वी पर गिरने से बड़ा नुकसान हो सकता है। सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत से ऐसे खगोलीय पिंड विचरण करते रहते हैं जो अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ये सौर प्रणाली के निर्माण के समय बने चट्टानी पिंड होते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। वैसे कुछ लोग क्षुद्र ग्रहों को ही उल्का पिंड भी कहते हैं, लेकिन जब कोई क्षुद्र ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने के बाद पृथ्वी पर गिरकर बच जाता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। वहीं जो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने से पहले ही सौर ऊर्जा से जल जाते हैं उन्हें उल्कापात्र कहा जाता है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हालांकि जब अपने देश की हम बात करते हैं तो भारत में क्षुद्र ग्रह की पृथ्वी से टकराने की घटनाएं बहुत कम आमतौर पर होती हैं।
0: वैसे कहा यह भी जाता है कि क्षुद्र ग्रह आमतौर पर क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं, जो सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाने वाला एक क्षेत्र है। और ये वो क्षेत्र है जहां क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जैसा कि आपने बताया। और इसकी खोज साल 1801 में खगोल शास्त्री गुइसे पियाजी ने की थी, और ये अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की तरह से अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। मानव जीवन की उत्पत्ति हो, पृथ्वी के विकास के बारे में मुख्य रहस्य हो, सबके बारे में जानने में ये बड़े ही सहायक होते हैं।

0: जी हाँ श्रोताओं, ले चल रहे हैं हम आपको वहाँ जहाँ से एक देश का तंत्र चलता है। जी हाँ, आज हम आपको उन किताबों की ओर, उन बातों की ओर लेकर चलेंगे जहाँ से आपको संसद पर कोई जानकारी मिल सकती है। लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च संस्था है। इसी के माध्यम से आम लोगों को संप्रभुता की अभिव्यक्ति मिलती है। संसद ही वो धुरी है जो देश के शासन की नींव है। संसद की इसी महत्ता को समझने के लिए हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है।
1: जी, ये हर साल आज ही के दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है और ये दिवस संसदों की उन प्रक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जिनके द्वारा सरकार की संसदीय प्रणालियां दुनिया भर के लोगों के रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाती है और साथ ही संसद के लिए चुनौतियों का सामना करने और उनसे प्रभावी तरीके से निपटने के लिए मौका भी है। आज का ये दिन भारत के संविधान के अनुसार संघीय विधान मंडल को संसद कहते हैं और संसद ही वो धुरी है जो देश के शासन की नींव है। ये अभी अभी गुलनाज जी ने बताया।
0: जी, इससे पहले नहीं पता था आपको।
1: जी नहीं।
0: श्रोताओं, इसके अलावा ये दिन अंतर संसदीय संघ के गठन की तिथि भी है जो चिन्हित करता है कि संसदों का एक वैश्विक संगठन है ये अंतर संसदीय संघ, और इसे 1889 में स्थापित किया गया था। अंतर संसदीय संघ का उद्देश्य पूरी दुनिया में शांति और सहयोग के साथ संसदीय संवाद को कायम करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। अपने इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी देशों की संसद और सांसदों के बीच समन्वय और अनुभवों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है। दुनिया के सभी देशों के चुने हुए प्रतिनिधियों को एक ही छत के नीचे लाने की पहल 1870-80 के दशक में शुरू हुई थी। जून 1888 में अमेरिकी सीनेट ने अन्य देशों के साथ संबंधों को परिभाषित करने वाली कमेटी के प्रस्तावों को स्वीकार करने का फैसला

0: फैसला किया था और इसकी प्रतिक्रिया में एक संयुक्त बैठक रखने का प्रस्ताव किया गया। 31 अक्टूबर 1888 को ये बैठक हुई और इसके परिणाम काफी सकारात्मक निकले।
1: और भारतीय संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों के राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है और संसद की इसी महत्ता को समझते हुए हर साल आज ही के दिन यानी 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है।
0: साथियों, 1889 में सांसदों के एक छोटे समूह के रूप में शुरू हुआ अंतर संसदीय संघ आज संसदीय कूटनीति और संवाद के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। वर्तमान परिदृश्य में संसदीय लोकतंत्र के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जब हम दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र के ऊपर

है। आज जब हम दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र के ऊपर नस्लीय, धार्मिक उन्माद और तानाशाही खतरे को मंडराते देख रहे हैं, ऐसे में अगर दुनिया में लोकतंत्र को मजबूती से पनपाना है तो दुनिया भर की संसद को लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह होने की ज़रूरत है।

0: यकीनन एक जमाना गुजर जाता है किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में जब पारंपरिक खेल खेले हुए और उन दिनों को याद किए हुए, जब छोटी छोटी चीज़ों को भी खेल का हिस्सा बना लिया जाता था। चाहे वो मम्मी जब आटा गूंथती थी तो थोड़ा सा लोया दे लेती थी हमें,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: उसी
1: जी
0: से ही
1: जी
0: हम कुछ खेल खेल लिया करते थे।
1: बिल्कुल। और छोटे छोटे चूल्हों में माचिस की तीलियां भर के ही अपने आप को संतुष्ट कर लिया करते थे। वो खेल अलग थे, लेकिन कुछ खेल ऐसे अनूठे होते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता।
0: बिल्कुल, खेलों की दुनिया बहुत अनोखी है, और इस अनोखी दुनिया में हम हर सप्ताह अपने श्रोताओं को लेकर जाते हैं हमारे सेगमेंट के जरिए, आओ जाने खेल। और आज का जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम एक बहुत ही खास खेल के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। खाने की चीज़ है, खेलने की चीज़ है, लेकिन उसके फायदे अगर आप देखें उस चीज़ के, तो उसमें प्रोटीन बहुत होता है, फायदा करता है। बहरहाल, चीज़ रोलिंग के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे
1: तो
0: हैं।
1: फिर गुलनाज जी, आज चलते हैं ग्लूसेस्टर की पहाड़ी पर।
0: अच्छा, नीचे खड़े रहना है
1: जी
0: पहाड़ी पर या
1: बिल्कुल,
0: ऊपर
1: नहीं
0: चढ़ना है?
1: नीचे खड़े
0: नीचे
1: रहना है
0: खड़े,
1: जी। तो सी की
0: अच्छा जी, ठीक है।
1: दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के ग्लूसेस्टर क्षेत्र में हर साल वसंत ऋतु में पनीर लुढ़काने का एक अनूठा आयोजन होता है, और ये आयोजन इंग्लैंड के कोने कोने से और विदेशों से भी लोगों को आकर्षित करता है। और ये जो प्रतियोगिता है वो पनीर की गेंद का पीछा करते हुए की जाती है, और उस पनीर के गेंद को पहाड़ी से नीचे लुढ़काते हैं। और ये एक ऐसा खेल है जिसमें 9 पाउंड तक वजनी डबल ग्लॉसेस्टर पनीर की एक गोल टुकड़े को पहाड़ी की चोटी से लुढ़काया जाता है, और ये प्रतियोगी इस गेंद को बारी बारी से नीचे तक पहुंचाते हैं।
0: जी हाँ, सुनने में आसान लगता है लेकिन ये खेल बेहद चुनौतीपूर्ण है। खिलाड़ी अक्सर गिरते हैं, लुढ़कते हैं और फिर भी उठकर दौड़ते रहते हैं, और अपने आप में देखने में ये बड़ा ही अजीब भी लग सकता है। इसकी परंपरा की अगर हम बात करें तो इतिहास तकरीबन 200 साल पुराना है, या उससे भी अधिक पुराना हम मान सकते हैं। हालांकि इसकी वास्तविक शुरुआत कब हुई इसका कोई निश्चित रिकॉर्ड भी उपलब्ध

0: नहीं है। और इस खेल के कुछ नियम भी हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि पहाड़ी के शीर्ष से गोल चीज़ को लुढ़काया जाता है और चीज़ को लगभग 1 सेकंड की बढ़त दी जाती है, उसके बाद प्रतियोगी थी जो भी हैं उसके पीछे दौड़ते हैं।
1: और जो पहले फिनिश लाइन पार कर जाता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है, और ये जो पनीर अपने घर ले भी जा
0: जी, मतलब
1: सकता
0: यहाँ पर जो है वो कोई ट्रॉफी नहीं दी जाती है,
1: है। जी
0: चीज़ पुरस्कार में दिया जाता है, ये
1: जी
0: मानकर
1: जी
0: चले हम।
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा, और मिल
1: और
0: बांट कर खाते होंगे सारे
1: मिल बांट के ही खाया
0: प्रतियोगी।
1: जाता होगा, क्योंकि इतना सारा तो कोई एक अकेला नहीं खा सकता। और इस दौड़ में भाग लेने वाले लोग ज्यादातर अपने वहां के स्थानीय निवासी लोग होते हैं,
0: जी
1: और दुनिया के कोनों कोनों से दर्शक जरूर इसमें जुड़ते हैं, अनोखे नज़ारे को देखने के लिए यहाँ आते हैं। और इस प्रतियोगिता में 4 डाउनहिल रेस शामिल होती है, जिसमें 1 महिलाओं के लिए और 3 पुरुषों के लिए होती है। और हर एक रेस जो है उसमें ज्यादातर 14 लोग भाग ले सकते हैं, हालांकि कुछ वर्षों में तो इसमें 40 लोगों तक की भागीदारी बढ़ा दी गई। और इसका शुभारंभ समारोह के संचालक द्वारा किया जाता है, जो चिल्लाते हैं तैयार हो जाओ
0: अच्छा,
1: और स्थिर रहो, और दूसरा तैयारी करो, और चौथा होता है शुरू हो जाओ।
0: और दिलचस्प बात यह है कि जब चीज पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी गति कितनी तेज होगी, तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार
1: जी
0: से
1: जी
0: चीज जब नीचे गिर रहा है और उसे पकड़ने के लिए प्रतियोगी दौड़ रहे हैं, तो अपने आप में ही ये कितना रोमांच भरा खेल है, ये
1: बिल्कुल
0: सोचकर ही दिल खुश भी हो
1: खुश
0: रहा
1: भी होता है।
0: है।
1: और एक अनूठी बात है जिसे देखने की जिज्ञासा भी पैदा होती है, तो हर दौड़ हर साल वसंत ऋतु के अवसर पे होती है, तो अगर अवकाश है तो जरूर जाइए। और ये अजीब लेकिन मजेदार खेल है
0: जी
1: और
0: हाँ
1: ऐतिहासिक भी है।
0: जी, और ये खेल हमें संदेश देता है कि खेल केवल जीतने का नाम नहीं है बल्कि साहस, उत्साह और परंपराओं का भी उत्सव है। कभी-कभी दुनिया के सबसे अनोखे खेल ही हमें सबसे बड़ी मुस्कान दे जाते हैं।
2: This is the story of a team and they're playing for their one and only dream to win the World Cup. So you better back up, 'cause they're coming on now.

श्रोताओं, खेल के मैदान में आ गए हैं हम और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज के मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और कुल 48 टीमों को 12 ग्रुप में बांटा गया था। ग्रुप चरण के समापन के बाद शीर्ष टीमें राउंड ऑफ 32 नॉकआउट चरण में पहुंच चुकी हैं और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ग्रुप चरण रिकॉर्डों से भरा रहा। 48 टीमों वाले इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में 17 दिनों के अंदर 215 गोल हुए, लाखों दर्शक स्टेडियम पहुंचे और मेसी के साथ साथ कई खिलाड़ियों ने नए रिकॉर्ड बनाए। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण का समापन बेहद शानदार अंदाज में हुआ। फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। 17 दिनों में पहले से कहीं ज्यादा देशों, खिलाड़ियों और समर्थकों को एक साथ जोड़ दिया। 16 शहरों में खेले गए 72 मैच वैश्विक जुनून, रोमांच और यादगार फुटबॉल के उत्सव में बदल गए।

श्रोताओं, राउंड 32 के पहले मैच में कल कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही कनाडा पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। ये तीसरी बार है कि कनाडा की टीम विश्व कप में उतरी है और

0: पहली बार नॉकआउट दौर में पहुंची है। 1986 और पिछले 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में कनाडा टीम ग्रुप दौर से ही बाहर हो गई थी। कनाडा की आइस हॉकी तो मशहूर है, अब फुटबॉल में भी कनाडा अपना नाम कमा रहा है। और एक और मैच हुआ था कल, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड 32 का मैच बेहद रोमांचक रहा और आखिरी दौर तक सांसें फुटबॉल देखने वालों की कभी चलती तो कभी रुकती रही। जी हां, ब्राजील ने जापान को 2-1, ब्राजील ने 2 गोल किए और जापान ने 1 गोल किया और 2-1 से मात देकर अगले दौर में ब्राजील पहुंच गया है। जापान ने 29वें मिनट में केशु सानो के गोल से बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे हाफ में कैसेमिरो के हेडर और एक्स्ट्रा टाइम के आखिरी मिनटों में ऐतिहासिक गोल की बदौलत ब्राजील ने नाटकीय अंदाज में जीत दर्ज की और मार्टिनेली बने ब्राजील के हीरो। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड 32 के एक बेहद रोमांचक और कड़े मुकाबले में रिकॉर्ड 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने एशिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक जापान को 2-1 से हरा दिया। हार के कगार पर खड़ी टीम ने जीत का सहरा अपने नाम किया और अब ब्राजील राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में पहुंच गया है और उस मुकाम पर जीत का सपना सजाए ये टीम लगातार आगे बढ़ रही है। और श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में करते हैं हम खास बात। राजस्थान के यात्रियों के लिए हवाई सफर का एक नया विकल्प खुलने जा रहा है। कल यानी 1 जुलाई से जोधपुर और जयपुर एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ में जुड़ जाएगा और फिर नियमित उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है।
1: और दोस्तों यहाँ हम करते हैं एक छोटी सी काम की बात जो आपकी पूरी दिनचर्या को आसान बना दे। तो 10 मिनट की तैयारी सुबह सुबह की आपका पूरा दिन जो है वो खुशगवार बना देती है और शाम को 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। कैसे? वो ऐसे कि बिस्तर से उठते ही 1 गिलास गुलगुला पानी पीजिए, मोबाइल बाद में, पानी पहले। ये बॉडी को गुड मॉर्निंग बोलता है और मेटाबॉलिज्म को जगाता है। और रात के कपड़े तह करके रख दिए, नहीं बस 3 मिनट लगते हैं। बिस्तर समेटिए, कमरा साफ कीजिए और मानिए बाहर का मौसम चाहे जैसा हो, साफ कमरा दिमाग को ऑल क्लियर का सिग्नल देता है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, जो भी काम है पर्ची पर लिख लीजिए, व्हाट्सएप की लिस्ट पर नहीं। जब दिन में कंफ्यूजन हो तो ये पर्ची आपका GPS बन जाएगी। और सबसे जरूरी काम ये करना है, बालकनी हो, छत हो, खिड़की हो, जहां भी सुबह की धूप मिलती है ले लीजिए। मुफ्त का विटामिन डी है और मूड का चार्जर भी है। छोटी छोटी बातें दिन भर के एहसास को सुखद बना देती है।

0: श्रोताओं, ना कस्में हैं ना वादे हैं, हाँ यादें हैं, और यादों में याद कर रहे हैं आज हम CNR राव को, जो रसायन वैज्ञानिक हैं और उन्होंने घन अवस्था और संरचनात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध किए। साथ ही हम याद कर रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आलोचक डॉक्टर रघुवंश सहाय वर्मा जी को, और प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि बाबा नागार्जुन को याद कर रहे हैं, और राजस्थान के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय राजनीतिज्ञ और संविधान सभा के सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी को याद कर रहे हैं, और भारत के प्रसिद्ध चित्रकार कृष्ण जी हवला जी आरा जी को भी हम आज याद कर रहे हैं, और भारतीय राजनीति के पितामह जिन्हें कहा जाता है, दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक दादा भाई नौरोजी को हम याद कर रहे हैं।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

न बातें यूं ही है, न मुलाकातें यूं ही है। 9:10 से अब तक के सफर में जितने सारे गाने सुने हैं उनके पीछे नाम जुड़ा है कल्याण जी आनंद जी का। और आज इन्हें याद करते हैं, कल्याण जी वीर जी शाह, जिनका जन्म आज ही के दिन 1928 में हुआ और हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार ये रहे हैं, आप और हम सभी जानते हैं।

0: कल्याण जी ने हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और वर्ष 1954 में आई फिल्म नागिन के गीतों में कुछ छंद संगीतबद्ध किए थे और भारतीय फिल्मों में इलेक्ट्रॉनिक्स संगीत की शुरुआत करने का श्रेय भी कल्याण जी को ही जाता है और 1992 में संगीत के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया था।
1: जी हाँ, और 1959 में उनके संगीत से सजी पहली फिल्म आई थी सम्राट चंद्रगुप्त, और इसके बाद जो कुछ भी है सब इतिहास है और उनके गीत हमारे दिल पर अंकित हैं।

0: श्रोतों, इस जोड़ी ने मदारी फिल्म का संगीत दिया था और सुर संसार में अपना अगला कदम रखा था और उसके बाद छलिया और छट्टा सट्टा बाजार में एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने संगीत दिया था और बेहतरीन संगीत हमें सुनने को भी मिला था।
1: 1965 से ये नाम गजब सुर्खियों में आया। हिमालय की गोद में इस फिल्म को जब किया तो इन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। मनोज कुमार की फिल्म उपकार, कस्मे, वादे, प्यार, वफा, सब ये गाने कौन भूल सकता है। संगीत देकर श्रोताओं को भाव विभोर करने की कला इनमें कूट कूट कर भरी थी। पूर्व और पश्चिम फिल्म हो, दुल्हन चली, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, सदाबहार गीतों से इन्होंने हमेशा समा बांधा। और 1970 में विजय आनंद निर्देशित फिल्म जॉनी मेरा नाम में एक गाना, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, और पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही।
0: वो बात पल भर की थी लेकिन सदियां बीत गई, आज भी मोहब्बत उनकी हमारे दिलों में है।
1: बिल्कुल। तो गीत चाहे कोई भी हो, जहाँ नाम कल्याण जी, आनंद जी आता है, उनके गीतों की एक खासियत है जो श्रोताओं को हमेशा भाविभोर करती है।
0: जी हाँ, 1968 में प्रदर्शित फिल्म सरस्वती चंद्र के उनके सुरीले गीतों का अंदाज ही कुछ अलग था और इस फिल्म के लिए उन्हें बतौर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया था।
1: जी, और फिल्म फेयर पुरस्कार भी इसी फिल्म

0: श्रोताओं, अपना तन और अपना मन स्वस्थ रखिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी जोधपुर के साथ। फिलहाल नमस्कार कार्यक्रम से गुलनाज खान और
1: कविता को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं गौरी देवी राव पार्टी को।

ਅਕੜ ਫਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਰੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਰ ਰੇ ਅਰੇ ਧਰੋਲੇ ਅਜਨ ਬੋਰੀ ਅਜ ਭਰੇ।

चैनल है, लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन को।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। मजरूख के बोल है, अनु मलिक का संगीत है, फिल्म का नाम है रेफ्यूजी।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बॉर्डर टू फिल्म से, सोनू निगम, अरिजीत सिंह और विशा की आवाजों में।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: LOC कारगिल, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल है, अनु मलिक का संगीत है।

फिल्म संगीत में आगे बढ़ रहे हैं। दिल परदेशी हो गया फिल्म के इस गीत के साथ सोनू निगम की आवाज है। सावन कुमार के बोल है और उषा खन्ना का संगीत है।

फिल्म संगीत का अगला और आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म महबूबा से। सुखविंदर सिंह, सोनू निगम और असलम सबरी की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का बोल है और इस्माइल दरबार का संगीत है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह सफर अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत की पहली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं रुचि परिहार की आवाज में।

0: इसे लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।
1: आपकी सेवा में मुझे एक गुरबानी का शब्द गाना है।
0: पहली रचना हम आपको सुना रहे हैं हरिओम शरणम की आवाज में।
1: गुरबानी गाते हुए भी सुना है तो वो चाहते हैं कि गुरबानी का एक शब्द आप जरूर पढ़ें। ये बहुत ही प्यारा और भाव भरा ये शब्द है। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एपिसोड 59, 59।

एक बार राजा ने विंध्याचल के जंगल में हिरणों का शिकार करते हुए एक विशालकाय सुअर को देखा। सुअर के पीछे घोड़ा दौड़ाता राजा प्रताप भानु अत्यंत गहन वन में पहुंच गया। राजा निशाना साध बाण चलाता किंतु सुअर अपने शरीर को बचा लेता। अंत में वो एक पहाड़ की गुफा में जा छुपा और राजा को हार कर लौटना पड़ा, किंतु वो घोर वन में रास्ता भूल गया।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का हमारे कार्यक्रम अभी संपन्न होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर। इस समय दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में यमुना जल समझौते को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। श्री शर्मा ने 29 जून के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस समझौते से राजस्थान की धरती को पानी मिलेगा। उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य की पानी की पीड़ा को समझा है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राज्य को केंद्र सरकार की ओर से कई सौगात मिली हैं।
2: यह योजना लगभग 34,000 करोड़ रुपए की योजना, इसमें 295 किलोमीटर पाइपलाइन से, 3 पाइपलाइन से पानी जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी सौगातें राजस्थान के लिए 12 साल के अंदर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, कल जो समझौता हुआ है हमारा यमुना जल का काम हो, या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो, नॉर्दर्न जयपुर रिंग रोड हो, अमृत भारत रेलवे स्टेशन हो, वंदे भारत ट्रेनें हो, और यही नहीं, आपने देखा होगा राजस्थान में पहली साल में राइजिंग राजस्थान माने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्वभर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत, स्वतंत्र और जवाबदेह संसद ही लोकतंत्र की सच्ची शक्ति और नागरिकों के अधिकारों की सबसे बड़ी संरक्षक है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें लोकतंत्र की आत्मा, संवाद, सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता और संवैधानिक मर्यादा को और मजबूत करने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है। प्रदेश में आज रात 12 बजे से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना लागू हो जाएगी। इसके साथ ही मनरेगा से लगभग 1,00,000 काम वीबीजी रामजी में ट्रांसफर हो जाएंगे। मनरेगा आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने बताया कि प्रदेश में कुल मिलाकर 6,00,000 काम वीबीजी रामजी में कराने की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए राजस्थान को 1,200 करोड़ रुपए का बजट मिला है। नई योजना में प्रशासनिक कामों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक मद में कुल बजट बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। इस राशि से 1,03,00,000 नए जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। बालोतरा के पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य

0: रिफाइनरी परिसर को स्वच्छ, हरा भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। रिफाइनरी प्रबंधन के अनुसार इस विशेष अभियान के तहत परिसर में 21,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इससे पहले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी यहां 20,000 पौधे रोपे गए। वृक्षारोपण के साथ साथ परिसर में साफ सफाई, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है। केंद्र सरकार ने माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार करदाता आगामी 31 जुलाई तक अपनी अपील दर्ज करा सकेंगे। इससे पहले सरकार ने इसके लिए 30 जून तक की समय सीमा तय की थी। मंत्रालय ने बताया कि अंतिम दिनों में पोर्टल पर बढ़े दबाव और तकनीकी दिक्कतों को लेकर विभिन्न हितधारकों से मिले ज्ञापन के बाद यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश में पुलिस के विशेष जांच दल एसओजी ने फर्जी एफएमएजी सर्टिफिकेट के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि विदेश से एमबीबीएस करने वाले इन आरोपियों ने भारत में पंजीयन के लिए अनिवार्य योग्यता परीक्षा का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवाया था। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान भाइया, जून रो महीनो चाल रियो है और कई किसान भाई आप रे मूंग है, मोठ है, गवार है, तिल है, ए फसला भी बढ़िया में हुई जमन उन वगत के तरह मैंने भाई किसान भाई बढ़िया आप रखिए तैयार करिया है। लाल दिना मई दे क्या कही अपने जोधपुर आड़ पाड़ जिका गांव है उठा किसान भाई खेतर मैंने तबिया काट रिया है कर रिया है बढ़िया हल खड़परान बढ़िया खेत ने हम कर रिया है कटी कटी खाद बीजी भी बिके रही है और खेतरी जी की मेड़बंदी जी की है वह भी आप कर रिया है काज रिया है पूर्ण रूपो किसान भाई की कोशिश आई जाए कि भाई जिम मान लो जमन आप रे बरसात हुई और हमें मूंग है गवार है भाई किसान भैया आज आपने जानकारी देवा के भाई मोटरी उन्नत खेती आप करा और अधिक जी को लाभ है वो आप किन तरह से प्राप्त कर सका हम जीव आप बात करा के भाई अपनो जी को आथुनो राजस्थान रहे इन महीने जी की दलहनी जी की फसल है जो मूंग है मोट है इन महीने मोट जी को है प्रमुख अपनी फसल है क्योंकि मोट रे महीने सूखा सहन करने जी की क्षमता है वह दूजी जी की दलहनी जी की फसल है वणु हल्ली हुआ करे और इंडी जी की मोटरी जी की जड़ा है आज जमीन महीने अणुती गहरी जावे और जमीन महीने जठे भी नमी वे तो आप नमी ले ले और कई दिन तक मतलब मान लो मे छाट नी भी वे तो मान लो आप फसल उबी रह जा और जो आप बात करा के भाई अपने अतुणे क्षेत्र महीने राजस्थान रे मोटरी जी की पैदावार है आ कुल जी की पैदावार है उनरो 99% जी को भागे ओया करे मोटरी औसत उपज जी की है वह 338 किलोग्राम प्रति हेक्टर लंगे टंगे अपना टूजा और उन्नत तकनीकों आप खेती महीने प्रयोग

तो 2500 ले 60% तई जो पैदावार है उनने आप बढ़ा सका। तो किसान भाई मन रही ने बात आवे कि भाई हमें आप मोट बाहनी चवा तो उन्नत जी की किस्मा है वह किसी किसी है अपने अठे पश्चिमी राजस्थान में जो आप बात करा RMO 40 किस्म है इन किस्म री पकने री जकी अवधि है वह 55 ले 60 दिन तक हुआ करे। औसत जकी उपज है वह लंगे टंगे 6-8 क्विंटल जकी है वह प्रति हेक्टर हो जाया करे। और इन किस्म री विशेषता आवे किसान भाइयों के पित्त शिरा मोजे करे प्रतिरोधी होया करे और सुखो सहन करने री जकी क्षमता है वह इन किस्म के महीने ज्यादा होया करे। हमें बात आवे की भाई एक और उन्नत किस्म मोटरी है जो RMO 225 है इनरे पकने री जी की अवधि है वह 60 ले 65 दिन तई व्या करे। औसत उपजरी आप बात करा किसान भाया वह 6 क्विंटल ले 8 क्विंटल जी को है प्रति हेक्टर उत्पादन इन RMO 225 किस्म सु हो जाया करे। हमें इन किस्म री विशेषता आ है के सूखा रोधी तो आ वेज है हाथ हाथे पौधो जी को है वो 30 ले 35 सेंटीमीटर ऊंचो जी को वो आपरे हो जाया करे। लंगे टंगे आप बात करा 1 फुट तई हो जाया करे। हमें मोटर मैंने एक किस्म और है काजरी मोट 2 इनरी पकनेरी जी की अवधि है वह 70 दिन ले 75 दिन महीने आप पक जाया करे और उत्पादन जी को है इन किस्म सो 8 ले 9 क्विंटल जी को उत्पादन है और प्रति हेक्टर में हो जा। इन किस्म रो जी को दानो है वो हलो वे और चारो भी जी को है इन किस्म सो घणो ही वे तो खास तौर सो जी का अपना दुधारू पशु है उनर वास्ते चारो भी काम में आ जा। 100 ले 150 जी की फलियां है प्रति पौधा माते लाग गया करे मतलब इन किस्म रे माते फाल भी घणो ही आवेला और पची जी की फलियां है उन सो जी को पौधो पूर्ण रूप हो जड़ जावे एकदम जट देखा जटे फलियां ही फलियां आपने दिखे। और एक बात और है किसान भाइया पित्त शिरा मोजे को प्रतिरोधी भी आ किस्म होया करे। हमें मोटर मैंने एक और किस्म है काजरी मोट 3 है आ 65 ले 70 दिन महीने पक जाया करे और 7-9 क्विंटल जो है प्रति हेक्टर इंडो उत्पादन हुआ करे। इंडा जी का दाना जी का है वे चमकदार है वे एकदम चमकीला चमकीला और दानो जी को है आकार मैंने मोटो वे और पित्त शिरा मोजे के प्रति प्रतिरोधी आ किस्म हुआ करे। हमें मोटर मैंने किसान भाई एक किस्म और आप काम में ले सके RMO 257 इन किस्म की पकने री जी की अवधि है वह 62 ले 65 दिन तक हुआ करे और औसत जी को उत्पादन है वो इन किस्म सो 5 ले 6 क्विंटल प्रति हेक्टर हुआ करे। विशेषता इन किस्म री आ है कि भाई पित्त शिरा और जी को थ्रिप्स रे प्रति आ बहुत सेंसिल हुआ करे। तो किसान भैया ए ही प्रमुख रूप से जी की किस्म ए अपने जोधपुर आड़े पाड़े अपने अथुने राजस्थान महीने आप भा सका। हम बात आवे कि भाई किसान भाई आपरे मिट्टी री किकर तैयारी करे खेत री तैयारी किकर करे मोटरी खेती रे वास्ते जिकी हल्की मिट्टिया है भूमि है बिमी भी उजिया करे। कई दान अपन देखा कि अपने जिका कांकड़ में खेत है जटे थोड़ा दड़ा है ऊंचा नीचा खेत है उठे भी मोटरी जिकी पैदावार है आ जोरदार हुआ करे। तो मोटर वास्ते बलुई दोमट है इन रे आगे बलुई भूमि जिकी है बहुत ही बढ़िया मानी जा करे और भूमि रे मैंने जल निकास री उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यूं नहीं कि भाई जटे कटी खाडा पड़ रिया है पानी भेड़ो हो जा तो उठे देखो मोटरी खेती थोड़ी दूरी है पानी जो है भरीडो नहीं रहना चाहिए। मोटरी खेती वास्ते दो बार बढ़िया आप हेरू जुताई करा बढ़िया आप पाटो दे और एक जुताई जी की है अपन बढ़िया हड़ाऊ कल्टीवेटर बढ़िया आप करा बढ़िया रहे। हम बात आवे की भाई बीज और बुआई जो आप उन्नत किस्म बढ़िया आप ले ली उपचारित आप बीज बोनो बहुत जरूरी है और मोटरी जी की बुआई है वे किसान भाई हम देखो के लास्ट महीने 15 जुलाई तई मतलब मोटरी जी की जुताई है वे आप कर दे। कई दान कहीं वे के कई बेगी पकने वाली जी किस्म है तो उन्नी जुलाई किसान भाई 30 जुलाई तई आप कर सके तो 30 जुलाई पहले पहला अपा जी की मोटरी जी की जुताई है वे आप कर दा तो बढ़िया उत्पादन मोटो आप ले सका। और मोटरी आप बुआई करा उन वक्त आपने ध्यान रखनो है कि भाई पंक्तियों पंक्तियां जी की दूरी है वह 45 सेंटीमीटर आपने रखनी चाहिए। कई दान किसान भाई कई करे की अपने तविया कार्ड नी आप मोट आप छिड़क दे जिनसो भी मोटरी जी की पैदावार है बड़ी जोरदार होया करे। हमें फसल चक्र भी अपने अपनावना बहुत जरूरी है क्योंकि हल्की उपज अपने लेनी है तो भूमि री जी की उर्वरा शक्ति है उन्हें किसान भाइया बनान रखनी अपने बहुत जरूरी होया करे। और जटे वर्षा आधारित अपना जो खेत है तो वोटे मोट है बाजरो है और फसल चक्र जी को है बहुत बढ़िया रिया करे। हमें कई किसान भाई मोटर उत्पादन ले के भाई मारे बढ़िया उत्पादन वे तो अपन खाद और उर्वरक जो है वो भी अपने देवनो बहुत जरूरी हो जाया करे। मोट दलहन की फसल होने के कारण इन्हें नाइट्रोजन री कम मात्रा री आवश्यकता होया करे। एक हेक्टर क्षेत्र वास्ते 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस री जरूरत हुआ करे। मोटर वास्ते समन्वित पोषक प्रबंधन बहुत बढ़िया रिया करे और खेतरी तैयारी भगत में जापा कई करा 2.5 टन गोबर या कम्पोस्ट री मात्रा जी की है।

मिट्टी ने मायने बढ़िया तरह आप खेत रे मायने मिला दा और इन उपरांत बुआई रे टाइम में आप 40 किलो डीएपी है और 5 किलोग्राम यूरिया मिट्टी रे मायने आप मिला दा। बुआई में पहला भी आप 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर 1 लीटर पानी में और 250 ग्राम गुड़ रे घोल में मिला परार बढ़िया आप बीजा ने उपचारित करा छाया में सुखा दा पचे आप बढ़िया बोदा। किसान भैया आ ही जानकारी के भाई हम आने वाला टाइम रे महीने आप मोटरी जी की उन्नत खेती कर परार हल्लो जी को लाभ है वो आप किन तरह से प्राप्त कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो टाइम पूरा वेरियो है। दिनेश राणे जाने शीख दिराओ राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी और एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर और एफएम एंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: छुट्टियां बीती, फिर स्कूल का पैगाम आया।
1: नए सपनों ने आंखों में अपना घर बनाया।
0: कंधों पर बस्ता, होठों पर प्यारी सी मुस्कान।
1: चलो फिर से लिखें मिलकर अपने भविष्य की नई उड़ान।
0: नारी वाटिका सुनने वाली सभी सखियों को अपनी रेडियो सखी मधु बनर्जी और
1: समीना का
0: प्यार भरा नमस्कार।
1: सखियों, गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल खुल गए हैं, तो आज नारी वाटिका में बातें होंगी स्कूल और बच्चों की, क्योंकि हम महिलाओं का जीवन बच्चों के इर्द गिर्द ही तो घूमता है ना।

0: टन टन टन ये सिर्फ स्कूल की पहली घंटी नहीं होती, बल्कि हर माँ की सुबह की शुरुआत होती है। छुट्टियों की मस्ती के बाद जब स्कूल खुलते हैं तो सबसे पहले बदलती है एक माँ की दिनचर्या।
1: हाँ समीना, अलार्म अब थोड़ा जल्दी बजता है, रसोई में चूल्हा थोड़ी जल्दी जलता है, और टिफिन में सिर्फ खाना नहीं माँ का प्यार भी पैक होकर जाता है।
0: बिल्कुल।
1: नई नई किताबों पर कवर चढ़ाना, कॉपियों पर नाम लिखना, यूनिफॉर्म प्रेस करना, जूतों को चमकाना, और बार बार यही पूछना कि बेटा सारी कॉपी रख तो लेना।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। बच्चा चाहे पहली बार जा रहा हो स्कूल मधु या फिर 10वीं में पढ़ता हो, माँ की चिंता कभी कम नहीं होती। उसे बस यही फिक्र रहती है कि बच्चा समय पर पहुँचे, अच्छे से पढ़े, टिफिन पूरा खाए और मुस्कुराता हुआ घर लौट आए।
1: बिल्कुल सही कह रही हो, छुट्टियों के दौरान जब बच्चे देर तक सोते थे ना, तो उन्हें हमें अब समय पर उठाना है, उनकी पसंद का नाश्ता बनाना है, पानी की बोतल भरनी है, होमवर्क की कॉपियां देखनी है, और सबसे जरूरी उनके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखनी है। एक माँ है ना, वो जानती है समीना कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि सपनों की पहली सीढ़ी है, इसलिए वो हर छोटी बड़ी तैयारी में पूरा दिन लगा देती है।
0: बिल्कुल सही कहा मधु। बच्चे जब स्कूल बस में बैठकर हाथ हिलाते हैं तो माँ के चेहरे पर भी मुस्कान होती है, लेकिन मन में ढेर सारी दुआएं भी तो होती है, मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, खुश रहे, कुछ नया सीखे और अच्छा इंसान बने।
1: सखियों, स्कूल की पहली घंटी बच्चों के लिए नई कक्षा की शुरुआत होती है, लेकिन माँ के लिए ये फिर से शुरू होने वाला एक नया सफर, जिम्मेदारियों का, उम्मीदों का और सपनों का।
0: बिल्कुल। हर सुबह माँ अपने बच्चों को स्कूल के लिए विदा करती है, लेकिन उसके साथ सपने, अपनी दुआएं, अपना विश्वास, वो भी तो साथ में भेजती है ना।
1: हाँ, तो इस नए सत्र में आइए उन सभी मम्मियों को, माताओं को सलाम करें जो बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी शिकायत के, हर दिन अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में जुटी रहती हैं, क्योंकि हर सफल बच्चे के

0: पीछे ना समीना, एक माँ की अनगिनत सुबहें और अनकही मेहनत जो छुपी होती है।
1: बिल्कुल, और यही कहती है कि हर समय जब हमें स्कूल जाने के लिए तैयार होना है और जो स्कूल की घंटी बज चुकी है टन टन टन, तो वो हमें बुला रही है।

0: शिक्षा मेरा अधिकार है।
1: सखियों, घंटी भी बज गई है और स्कूल भी खुल गए हैं। नन्हे कदम जो है वो स्कूल की ओर बढ़ भी चले हैं।
2: बिल्कुल
1: समीना, जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं ना जो हमेशा याद रह जाते हैं। उन्हीं में से एक है बच्चे का पहली बार स्कूल जाना।
2: बिल्कुल
1: छोटे छोटे कदमों से, कंधे पर छोटा सा बस्ता लिए, दिल में ढेर सारे सवाल और डर लिए, थोड़ा सा डर लिए, जब वो बढ़ता है ना स्कूल की ओर, वो यादें जिंदगी भर रहती हैं।
2: बिल्कुल, कुछ हमारे साथ भी ऐसी यादें जुड़ी हुई, और हमारे बच्चों की यादें भी हमारे मन में आज तक है।
1: हाँ।
2: तो सिर्फ बच्चा ही नहीं डरता मधु, कई बार माँ की आंखें भी नम हो जाती है। बच्चे की उंगलियां जब पहली बार माँ का हाथ छोड़ती है ना, तो सिर्फ स्कूल का पहला दिन ही नहीं होता बल्कि आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी भी होती है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। अक्सर बच्चे जो हैं वो

0: नए माहौल, नए चेहरों और माँ से कुछ घंटों की जो दूरी होगी ना, उससे घबरा जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: ऐसे में सबसे जरूरी है कि उनके डर को समझा जाए, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाए, थोड़ा प्यार से समझाया जाए।
1: बिल्कुल, बच्चों से हमें ये नहीं कहना चाहिए कि रोइए मत, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, बल्कि बच्चों से हमें ये कहना चाहिए कि डर लगना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ के इन शब्दों में बच्चे का सबसे बड़ा आत्मविश्वास छिपा होता है।
0: बिल्कुल सही कह रही हूँ। स्कूल शुरू होने से पहले ना बच्चे को एक बार स्कूल ले जाकर दिखाया भी जा सकता है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए कि उसको एहसास हो कि वो यहाँ पे नए दोस्त मिलेंगे, नई कहानियां होंगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो एक उत्साह बना रहेगा।
1: बिल्कुल, और जब मदर टीचर को जब बच्चा देखता है ना, तो उससे भी उसका अटैचमेंट बढ़ जाता है
0: बिल्कुल
1: और वो उनसे भी अपनी माँ की तरह ही कुछ बातें करना सीख
0: हाँ
1: जाता
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही कह
1: बिल्कुल,
0: रही हूँ।
1: और एक बात, पहले दिन अगर बच्चा रोता भी है ना, तो उसे उसकी कमजोरी मत समझिए, है ना, ये उसके मन के भाव होते हैं, तो हमें धैर्य रखने की जरूरत है। बच्चा
0: बिल्कुल
1: है, वो तो रोएगा ही, प्यार दीजिए, कुछ दिनों में वही बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाने लगेगा।
0: हाँ, इसके लिए जरूरी है कि जब बच्चा शुरुआती दौर में स्कूल जाए ना, तो उसकी छोटी छोटी बातों को हम सुने, उसने क्या महसूस किया, उसको आज कैसा लगा, क्या
1: हाँ
0: खेला, वो सब हमें सुनना चाहिए।
1: बिल्कुल, और बच्चे का आत्मविश्वास डांट से नहीं, विश्वास से बढ़ता है, तो स्कूल का अनुभव जितना सुखद होगा, सीखने की उसकी यात्रा उतनी ही ज्यादा आनंददायक होती चली
0: बिल्कुल
1: जाएगी।
0: बिल्कुल, बच्चे को स्कूल तक छोड़ना ही काफी नहीं है सखियों, उसके मन में भरोसा भी छोड़ कर आना होता है।
1: क्योंकि स्कूल की पहली घंटी शिक्षा की शुरुआत करती है, लेकिन माँ पिता का विश्वास बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव भी रखता है।

0: सखियों, स्कूल खुलते ही ना बच्चों के कंधों पर आ गए हैं नए बस्ते और आंखों में नए सपने।
1: बिल्कुल
0: लेकिन समीना, इन सपनों से भी पहले सपने कौन देखता है? माँ की आंखें।
1: बिल्कुल। और तैयारी में जुट जाती है माँ। और हम अक्सर समझते हैं कि स्कूल की तैयारी का मतलब सिर्फ किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म और टिफिन है, लेकिन असली तैयारी तो बच्चे के मन की होती है। छुट्टियों की आज़ादी से निकलकर फिर से अनुशासन में लौटना, नए दोस्तों से मिलना, नई क्लास, नए शिक्षक, यह सब बच्चे के मन में उत्साह के साथ थोड़ी सी घबराहट भी लेकर के आता
0: हाँ,
1: है।
0: और ये जो घबराहट है ना, यही माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है। वो सिर्फ बच्चे का बैग तैयार नहीं करती, बल्कि उसके मन में भरोसा भी भरती है, समझाती है कि नई शुरुआत हमेशा नए अवसर लेकर आती है।
1: बिल्कुल सही कहा मधु। और कई छोटे बच्चे तो पहले दिन स्कूल जाने से डरते हैं, कोई माँ का हाथ छोड़ना नहीं चाहता, कोई नई क्लास को लेकर के परेशान होता है। ऐसे समय में माँ की एक मुस्कान, एक प्यार भरी झप्पी और एक छोटा सा वादा बच्चे का पूरा डर दूर कर देते
0: माँ
1: हैं।
0: बच्चे से ये नहीं कहती समीना कि डरना मत, बल्कि जो तुमने कहा ना पहले कि कहती मैं हमेशा साथ रहती, यही उसको विश्वास जो है वो उसको आत्मविश्वासी बनाता है बच्चे को।
1: बिल्कुल। और एक बात और ये कि बच्चे की तुलना दूसरों से करने की बजाय उसकी अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बच्चा अपनी अलग पहचान और अपनी अलग गति से आगे बढ़ता
0: हाँ,
1: है।
0: बिल्कुल सही कहा। नए

0: सत्र की शुरुआत केवल अच्छे अंक लाने का लक्ष्य नहीं होनी चाहिए, अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें और सीखने की खुशी भी तो उतनी ही जरूरी है।
1: हाँ माँ, अगर हर दिन बच्चे से ये पूछे कि आज स्कूल में क्या नया सीखा, आज किस बात से खुशी मिली, तो बच्चा जो है वो पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर समझने लगता है।
0: बिल्कुल, हर सुबह जब माँ अपने बच्चे का टिफिन पैक करती है तो उसके साथ अपनी दुआएं भी तो रख देती है, और जब शाम को बच्चा लौटता है ना समीना, तो सबसे पहले उसके चेहरे की मुस्कान पड़ती है कि खुश है या नहीं।
1: तो बस इस सत्र में आइए हम बच्चों पर सिर्फ अच्छे अंक लाने का दबाव ना डालें बल्कि उन्हें ये भी भरोसा दें कि वो जैसे हैं वैसे ही हमारे लिए अनमोल हैं।
0: क्योंकि किताबें जो हैं वो ज्ञान देती हैं, शिक्षक दिशा देते हैं, लेकिन उड़ान भरने का हौसला अक्सर माँ की बातों से मिलता है सखियों। तो आइए नए सत्र के साथ नए सपनों को भी प्यार, विश्वास और मुस्कान के साथ उड़ान दें
1: और खोल दें हमारे नन्हों के छोटे छोटे पंख।

0: सखियों, जूतों की चमक और किताबों की वो सौंधी सी खुशबू वापस लौट आई है, लेकिन मधु मम्मियों के माथे पर एक छोटा सा सवालिया निशान भी आ गया
1: हाँ, वो सबके चेहरों पर नजर आ रहा है।
0: बिल्कुल, रोज सुबह टिफिन में क्या बनेगा ये सवाल, और दूसरा ये कि बच्चों का स्कूल बैग कैसे सेट करें।
1: हाँ, छोटे बच्चों के स्कूल बैग को सेट करना भी तो समीना एक बहुत ही बड़ी टेंशन का काम है।
0: बिल्कुल, और उनको टिफिन में क्या देना ये भी सबसे बड़ी समस्या तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है।
1: बिल्कुल, कुछ चीज ऐसी हो जो बच्चे खा भी लेना।
0: हाँ
1: और
0: बिल्कुल,
1: स्कूल बैग भी ये है कि भाई ये बच्चे पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं हो कि छूट जाए बैग जमाते टाइम,
0: बिल्कुल
1: तो वो
0: बिल्कुल।
1: भी जरूरी है। और बैग बहुत ज्यादा वजनदार भी ना हो जाए।
0: हाँ, बच्चों की जो है कैपेसिटी है उसके अनुसार बैग होना चाहिए, कौन सी चीज कब जरूरत पड़ रही है उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए।

0: एक तो उनका टाइम टेबल डेली देखना चाहिए कि उनका आज किस क्लास है, कौन से पीरियड है, उस
1: हाँ
0: विषय की कॉपी जो है वो अपन बैग में कॉपी किताबें जरूर जमाएं, ऐसा ना
1: बिल्कुल
0: हो कि वो छूट जाए।
1: वो छूट जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस साथी की जो साल भर बच्चों की पीठ पर रहने वाला है, यानी स्कूल का बैग।
0: हाँ
1: अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे अपनी क्षमता से ज़्यादा भारी बैग उठाकर झुक कर के चल रहे होते हैं, तो इस बार हमें इन बातों का ख्याल रखना है, जैसा कि आपने बताया कि सबसे पहले बैग का चुनाव किस तरह का करें। बैग को चुनना भी सबसे बड़ा टास्क होता
0: बिल्कुल
1: है ना। बैग हमेशा चौड़े और गद्देदार स्ट्रैप्स वाला ही चुने, ताकि बच्चों के कंधों पर सीधा दबाव ना
0: हाँ, और
1: पड़े।
0: वो शायद कंधों पर चुभेगा भी नहीं
1: हाँ
0: तो वो सही
1: बिल्कुल
0: रहेगा। और वजन का भी ध्यान रखना जरूरी है, भारी किताबें जो होती है ना हमेशा बैग के पीछे की तरफ रखें, पीठ के पास ना रखें, और हल्की कॉपियों को थोड़ा आगे रखें, इससे जो बैग बैलेंस बना के रखेगा और बच्चे की पीठ पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि टाइम टेबल के हिसाब से सारी सारी किताबें जो है वो बैग में रखनी है, तो बच्चों को आदत डालें कि वो हमेशा अपना, सिर्फ हम ही नहीं जो बड़े बच्चे हैं उनको भी हमें थोड़ी सी आदत अब पहले से डलवानी पड़ेगी कि वो अपनी जो डायरी है उसको अच्छे से देख लें कि कब कौन सी बुक की ज़रूरत है, कब कौन सी डायरी की ज़रूरत है, कौन
0: बिल्कुल
1: से सामान की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग रात को ये सारा काम करके रख
0: हाँ,
1: लें।
0: सुबह यदि करेंगे तो हौचपच हो जाएगा, व्यवस्थित
1: हाँ
0: सा हो जाएगा। और सबसे बड़ी एक बात है कि जो गैर जरूरी सामान है
1: हाँ
0: उसको निकालते रहें, वो निकालना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पानी की बोतल जो है उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो लीक ना हो जाए।
1: बिल्कुल। तो इस तरह से पानी की बोतल में भी ये देखें कि वो साफ होने वाली हो। कई बोतलों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि उसको सही तरीके से हम साफ नहीं कर पाते, तो
0: बिल्कुल
1: साफ सफाई और हाइजीन हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखना है। साथ ही साथ में इस मौसम, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, तो बच्चों को ठंडा पानी मिल सके, और वो उसके साथ ही कुछ ऐसी छोटी बोतल्स भी हम उनको दें कि वो पानी के अलावा बहुत सी जो लिक्विड जूस वगैरह है
0: हाँ,
1: वो भी उसमें
0: उसकी
1: ले
0: कमी
1: सके।
0: पूरी होती रहे पानी
1: बिल्कुल
0: की, गर्मी
1: बिल्कुल
0: में भी पानी की कमी पूरी हो जाए। और अभी ये जून का महीना जा चुका है, जुलाई के महीने तक तो इसकी जरूरत पड़ने ही वाली है।
1: हाँ तो
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, तो ये जो स्कूल की मस्ती भरे दिन हैं वो और भी मस्ती भरे हो जाएंगे अगर उनकी जो व्यवस्थित चीजें हैं उनको हम और भी ज्यादा व्यवस्थित करके भेजेंगे।

0: हाँ तो मधु, याद आ गई ना अपनी भी स्कूल की मस्ती।
1: हाँ बिल्कुल। और स्कूल की मस्ती में वो लंच बॉक्स का जो टाइम होता है ना, लंच बॉक्स खोलने का, वो लंच टाइम में हम बॉक्स खोलते हैं, वो जो डब्बा है ना वो भी
0: हाँ
1: याद आ रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आधी छुट्टी जब होती थी जिसको हम लंच टाइम कहते हैं, उसमें जब डब्बा खोलते हैं ना तो बच्चों के चेहरे खिल जाते हैं। लंच बॉक्स और टिफिन की जो खुशबू है वो पूरे रूम में, जो क्लासरूम होता है उसमें भर जाती है और
0: और
1: पेट
0: लास्ट वाला जो फोर्थ लंच लंच पीरियड से पहले वाला जो पीरियड होता है, कभी कभी डब्बा उसमें भी खुलना शुरू हो
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: जाता
1: चोरी छुपे टेबल के नीचे।
0: बिल्कुल।
1: हाँ पेट भरने के लिए नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि एनर्जी की, हमारी एनर्जी खत्म हो गई है, अब लंच खाएंगे तभी एनर्जी आएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी एनर्जी का पावर हाउस होता है ये जो डब्बा होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसका सबसे पहली बात की इसका मटेरियल क्या होना चाहिए। हम मस्ती की बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम ये भी तो ध्यान रखें कि हम जो बच्चों के लिए टिफिन बॉक्स खरीद रहे हैं उसका मटेरियल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कहेंगे प्लास्टिक को बाय बाय,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि हमेशा अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील का जो है टिफिन वो आप ले रहे हो तो वो सबसे अच्छा है, और ये सुरक्षित भी है और साफ करने में भी आसान होता है। अगर कभी बच्चे अगर इसको सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं या अगर कहीं से लीक होने का भी इसमें डर नहीं रहता।
1: हाँ, और ये नुकसान नहीं करता है,
0: बिल्कुल
1: प्लास्टिक नुकसान करता है। और ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि टिफिन तो हमने चयन कर लिया लेकिन हम उसमें रखें क्या। तो सखियों, छोटे जो बच्चे हैं ना उनको ऐसा खाना दिया जाना चाहिए टिफिन में जिसको वो आसानी से खा सके और उनके हाथ जो हैं वो ज़्यादा गंदे ना हों।
0: बिल्कुल
1: जैसे रोटी सब्जी को रोल बनाकर हम उसको दे सकते हैं, रोटी के बीच में
0: हाँ
1: सब्जी को
0: सब्जी
1: डाल के उसका
0: लगाकर।
1: रोल बना दें, और सूजी से छोटे छोटे उत्पम बना लें और ये स्टफ्ड पराठे बना दें,
0: बिल्कुल
1: तो बच्चों को खाने में इजी होगा, आसानी
0: बिल्कुल। और
1: रहेगी।
0: इसके साथ हम उनको फ्रूट्स जरूर दें क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: वो भी उनके लिए सेहत के लिए, कई बार बच्चे होते हैं वो आधा ही लंच खाते हैं या फिर तो कुछ ऐसा हो जो उनके लिए हेल्दी सा हो और वो
1: बिल्कुल
0: खा करके उसका उनका पेट भरा रहे। और सबसे बड़ी बात कि टिफिन का डेकोरेशन टिफिन ऐसा
1: बिल्कुल।
0: हो कि वो रंग बिरंगा जब होता है ना टिफिन में, सारी वेराइटीज अलग अलग तरीके से नजर आती है तो बच्चों को देख करके खाने का मन करता है। तो हम जो जैसा कि मैंने बताया अलग अलग स्लाइस में काट करके फलों को रख सकते हैं, और जब टिफिन रंग बिरंगा दिखेगा ना तो बच्चा उसे पूरा खत्म करके ही लौटेगा।
1: हाँ, कहीं ककड़ी रख दी, कहीं अनार रख दिया, कहीं सेब रख दिया, तो ऐसे रंग बिरंगा होगा तो वो अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल। और जब मम्मी देखेगी कि हाँ टिफिन पूरा खत्म है तो मम्मी भी खुश।
1: और सखियों एक और बात है कि यदि हफ्ते में एक दिन कम से कम हम बच्चों की पसंद का हेल्दी बनाएं लेकिन बच्चों की पसंद का कुछ बना दें और साथ में एक लव नोट रख दें,
0: अच्छा।
1: जैसे हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा, आई लव यू बेटा, ऐसा कोई स्टिकर लगा दें या रख देना पर्ची, तो यकीन मानो बच्चा जब उसको खोलेगा तो उसका दिन बन जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। तो स्कूल की शुरुआत जो है वो एक तनाव नहीं बल्कि एक खूबसूरत उत्सव बन सकता है। बच्चों को नए सेशन के लिए खूब सारा उत्साह दिया जाना चाहिए, साथ बैठ करके उनका बैग जमाना चाहिए और प्यार के स्वाद से भरा हम टिफिन भी उनके साथ सजा
1: हाँ,
0: सकते हैं।
1: तो जब टिफिन बनेगा तो उस डब्बे को बच्चे खोलेंगे तो उसकी खुशबू को महसूस भी करेंगे और उसके स्वाद को लेकर ललचा भी जाएंगे और टिफिन जो डब्बा है वो खाली भी हो जाएगा।

0: तो मधु जो हमारी जो सखियां हैं वो बच्चों का डब्बा भी उतने ही प्यार से पैक करती है, और वो वही जो सखियां हैं वो ऑफिस की पीपीटी को भी बहुत अच्छे से संभालती है और घर में मटर पनीर की ग्रेवी को भी। लेकिन सबसे बड़ा मिशन इम्पॉसिबल तब शुरू होता है जब शाम को थकी हारी माँ जब घर लौटती है ना, क्योंकि वो वर्किंग वूमन है, और जब वो काम करके शाम को घर पे आती है तो सामने से बच्चा आकर के गले लगता है और आकर के कहता है, मम्मी कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है।
1: बस समीना, वहीं पर तो दिल धड़ की जो धड़कन है ना वो बढ़ जाती है, एकदम से धड़क उठता है दिल कि अरे बाप रे, ऑफिस का टारगेट भी कल पूरा करना है और बच्चे का रिपोर्ट कार्ड भी खराब ना हो ये भी देखना है।
0: बिल्कुल
1: तो ये जो है ना, ये हमारी सखियों के लिए, हम कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा संतुलन का विषय है।
0: बिल्कुल
1: समझ में ही नहीं आता कि हम कूल वर्किंग मॉम बने तो बने कैसे, और
0: बिल्कुल
1: एक अलग सा जो गिल्ट है ना उसमें ही हम जीते रहते हैं।
0: बिल्कुल। तो भाई ये कहना भी आसान नहीं लगता कि भाई मधु के हाँ बहुत इजीली हो जाएगा ये सारी चीजें, करना मुश्किल है, पर कुछ ऐसी जादुई टिप्स भी हैं जिनको करके, जिनको अपना करके हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा आसान बना सकती हैं।
1: हाँ सखियों, क्वांटिटी जो होती है ना उस पर नहीं, क्वालिटी पर यदि ध्यान दिया जाए तो हम काफी कुछ कर सकते हैं। जैसे यदि ऑफिस से आकर 3 घंटे बच्चे से सिर खपाकर डांटे, उससे बेहतर है कि मोबाइल को साइलेंट करें और 30 से 40 मिनट, मतलब करीब करीब आधा पौन घंटा बच्चे की पढ़ाई को दे दें।
0: हाँ
1: उसको हम दिन में अपना होमवर्क करना खुद सिखाएं और बोले कि अपना होमवर्क खुद से कर ले, जो उसको नहीं आ रहा है वो हमारे से करे वो, और उसको खुद को सेल्फ स्टडी की यदि आदत डाल दे तो ये 30 से जो 40 मिनट है ना ये सफिशियंट टाइम होगा। जब
0: हाँ
1: हम अपना 100% फोकस उसके ऊपर देंगे, फोन नहीं होगा, इधर उधर ध्यान नहीं रहेगा, मन
0: बिल्कुल
1: लगाकर बच्चा भी पढ़ेगा और हम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा काम जो है वो इजी हो जाएगा।
0: बिल्कुल। और इसके साथ ही बच्चों को थोड़ा सा खोलने के लिए, खेलने के लिए समय भी दें, क्योंकि होता यह है कि अगर

0: बच्चा स्कूल से आया है और आते ही हमने उसको होमवर्क के लिए बैठा दिया, या कई कई वर्किंग वुमेन्स हैं जो दोपहर में लौट आती हैं, सुबह जल्दी जाती हैं, दोपहर में अगर वो लौट आती हैं तो उनको भी ये लगता है कि अब बच्चों को होमवर्क दे दिया जाए या जो होमवर्क है वो करवा दिया जाए,
1: बिल्कुल
0: तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चे को
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो उनको स्पून फीडिंग भी नहीं कराएं, जैसा कि आपने बताया कि बच्चे को खुद से कुछ करने की आदत भी दें। अगर आपका बच्चा सो नहीं रहा है दोपहर में या वो कुछ करना चाहता है तो आपको उसको कुछ क्रिएटिव करने के लिए देना
1: बिल्कुल
0: है,
1: उसको अप्रिशिएट करना चाहिए
0: एप्रिशिएट
1: हमको।
0: भी करना है, तो ये उसको चैप्टर रीड करने के लिए बोल सकते हैं, है ना, और उसको ये कहें कि जब तक मम्मा ये काम कर रही है आपको ये काम करना है, उससे बच्चे
1: बिल्कुल
0: में जिम्मेदारी की भावना भी आएगी।
1: हाँ बिल्कुल। और एक बात और है कि जो हम वर्किंग डेज होते हैं उसमें हम होमवर्क को चेक करना नहीं टाले, कि
0: हाँ
1: हम बिजी हैं तो कम से कम इतना समय दें कि एक बार उसकी कॉपीज पर नजर डाल लें या डायरी पर नजर डाल लें कि उसका वो जो डेली का होमवर्क है हम रोज चेक कर लें।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: भारी भरकम जो टॉपिक्स होते हैं ना, कई टॉपिक्स बच्चे को मुश्किल लगते हैं या कोई सब्जेक्ट उसको मुश्किल लगता है, उसको हम अपने छुट्टी के दिन के लिए बचा कर रख सकते हैं। यदि
0: हाँ
1: हमारी रविवार को छुट्टी होती है तो हम उस दिन उस टॉपिक को उसको समझा सकते हैं पास बिठा करके और सुकून से उसको पढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा सा बच्चे का वो टॉपिक भी अच्छा हो जाएगा और उसका उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात कि सुपर मॉम बनने के चक्कर में खुद को, जैसा कि कहा कि गिल्ट गिल्ट हो जाता है कि हम अपने बच्चे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो खुद को गिल्ट ट्रिप पर नहीं रखें और ये सोचें कि बच्चे, अगर कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हैं या बच्चा उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो उस साल के या उस सेशन के जो आपके बच्चे के मार्क्स हैं वही उसके लिए जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है। अगर एक
1: बिल्कुल
0: बार थोड़े से मार्क्स कम भी आ गए तो कोई बात नहीं, बच्चे को शुरुआत से उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए उसको अच्छे से समझाएं ताकि
1: हाँ
0: वो मजबूत, नींव से, जड़ से मजबूत बन
1: बिल्कुल,
0: सके।
1: नींव मजबूत होगी और हमारी जो मेहनत है ना, जो
0: हाँ
1: हम घर पे कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, वो मेहनत हमारा स्ट्रगल देखकर बच्चा जो है ना वो खुद भी खुद मेहनत करना सीख रहा है, ये
0: बिल्कुल
1: भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम जो है ना वो उसके रोल मॉडल हैं समीना।
0: बिल्कुल। तो उड़ान बड़ी चीज है, रोज उड़ान भरो।
1: मगर उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे।
0: बिल्कुल
2: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले, हम मिलकर स्कूल चले हम।

0: सखियों, अलग अलग उम्र के जो बच्चे हैं वो स्कूल चल दिए, कोई प्ले ग्रुप में चला गया, कोई बड़ी क्लास में जा रहा है, और समीना कुछ बच्चे जो हैं वो 12वीं पास आउट करके कॉलेज की ओर कदम रख रहे हैं। तो बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, जब
1: बिल्कुल
0: भी वो स्कूल जाता है ना, तो स्कूल या कॉलेज के लिए जाता है, तो पेरेंट्स के दिल में एक चिंता रहती है कि क्या मेरा बच्चा सुरक्षित होगा।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस उत्साह के पीछे माँ और पिता के मन में थोड़ी सी ये टेंशन भी होती है कि माहौल कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे। और जब सबसे ज़्यादा असमंजस की स्थिति तब आती है जब बच्चा अपना शहर छोड़ करके बाहर जा रहा होता है, तो उस
0: बिल्कुल
1: समय उसकी पैकिंग, उसको सारी चीज़ें सिखाना, कैसे कैसे वहाँ पे रहना है, किस तरह के लोग होंगे, ये सारी कश्मकश हमारे मन में चल रही होती है।
0: इसमें भी है ना, देखो ना, सबसे बड़ी बात स्कूल में तो बुलिंग का डर,
1: हाँ
0: और कॉलेज का यदि बच्चा है, स्कूल पास आउट करके पहली बार कॉलेज जा रहा है, तो एक रैगिंग का डर बच्चों के अंदर होता है।
1: बिल्कुल, हालांकि अब उन पर, इन सारी चीज़ों पर बहुत लगाम लग गई है, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो अपनी शरारतें कहाँ छोड़ेंगे। तो अगर बच्चे इस तरह के नए माहौल में अगर शुरुआत में ही तनाव में आ जाएंगे तो उनके लिए आगे की जो पढ़ाई है वो थोड़ा सा मुश्किल हो
0: तो
1: जाती है।
0: इसमें है ना, हम पेरेंट्स भी बच्चों की मदद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के बीच में यदि आपसी कोई नोकझोंक हो रही है तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन यदि वो नोकझोंक बुलिंग या रैगिंग का रूप ले, तो हमें है ना ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के कोमल मन पर बहुत गहरे घाव छूट जाएंगे
1: बिल्कुल
0: और जो कई वर्ष तक नहीं भरेंगे। तो उस समय हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, अलर्ट होने की ज़रूरत है।
1: बिल्कुल, तो इसके बारे में हमें अलर्ट भी होना है और खुल करके घर में बातचीत करनी पड़ेगी, बच्चों से भी इस बारे में बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला सवाल ये कि हमें इसको समझना कैसे पड़ेगा।
0: हाँ, मतलब ये समझ में कैसे आए, पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा जो है वो बुलिंग या रैगिंग का शिकार हो रहा है,
1: हाँ
0: तो इसके लिए क्या है कि बच्चे क्या होता है समीना, अक्सर डर या शर्म में रहते हैं, तो
1: हाँ
0: वो हमें बताते नहीं हैं,
1: हाँ
0: इसके लिए हमें वो चुप हो जाते हैं अक्सर।
1: बिल्कुल, तो अगर उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आने लगे या माता पिता को ये लगे कि बच्चा कुछ गुमसुम है, कुछ उदास है या कुछ बातों को छुपा रहा है, तो वहीं से उस पर एक
0: अलर्ट होने
1: पैनी पैनी नजर
0: बिल्कुल
1: रखने की जरूरत
0: बिल्कुल
1: है।
0: है, जो बच्चा हंसता खेलता रहता हो वो एकदम से चिड़चिड़ा हो जाए, ये भी बहुत मतलब सिम्टम है कि वो परेशान है।
1: बिल्कुल
0: यदि बच्चा सुबह सुबह पेट दर्द का बहाना बना ले, सिर दर्द का बहाना बना ले, और स्कूल बस को मिस करने की कोशिश करे हमेशा कि बस जो है वो मेरी मिस हो जाए।
1: हाँ बिल्कुल, बहाने बना रहा है या उसकी नींद या भूख में कमी आ गई हो, सो नहीं पा रहा है, खाना नहीं ढंग से खा पा रहा है, रात में अचानक डर के उठ बैठता है, या फिर ठीक से खाना नहीं खाता है, या किताबें पेंसिल या जो भी उसकी जो ज़रूरी सामान है वो खो देता है, तो
0: हाँ,
1: इसके बारे में भी पेरेंट्स को देखने की
0: एक
1: ज़रूरत।
0: चीज़ और भी देखनी चाहिए कि यदि बच्चे के कपड़ों पर किसी तरह के निशान हैं या कहीं से कपड़ा फट रहा है, तो उससे सवाल किया जाए कि ये क्यों हुआ,
1: हाँ
0: कैसे हुआ, क्या वो गिर गया था, तो वो सब डिटेल में पूछने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम इमोशनल जो बॉन्ड है ना समीना,
1: हाँ
0: वो बच्चों के साथ बनाएं।
1: बिल्कुल,
0: यदि
1: सवाल
0: हम
1: करें लेकिन बहुत ही प्यार से।
0: तब बच्चे कहेंगे कि जिंदगी में कोई गम ही नहीं।

0: क्यों अभी हम बात कर रहे थे बुलिंग और रैगिंग की। तो समीना, कई बार ऐसा होता है ना कि अपन बच्चों को समझ नहीं पाते, अपन बात कर रहे थे, तो जब भी हमें लगे ना इसकी हमें समझ नहीं आ रहा बच्चे का व्यवहार, तो हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिससे वो इजीली हमें ये बात कह सकें।
1: बिल्कुल
0: वो जैसे 3 पॉइंट हैं, सुनो, समझो और सिखाओ। हम
1: जी
0: कह सकते हैं कि जब भी बच्चा बच्चे के साथ हम रात को सोएं, बात करें, तो उससे पढ़ाई की बात करना ही ज़रूरी नहीं है, उससे ये भी बोलें कि आज उसे किस बात में मज़ा आया या किस चीज़ ने उसे परेशान किया, और साथ ही भरोसा भी दिलाएं कि पूरी दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा उसके साथ खड़े हैं।
1: बिल्कुल। और ये बात जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भर देगी। और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को सिखाएं, तो बच्चों को सिखाएं कि गलत के सामने झुकना नहीं है। हम बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन कई बार हम ये बताना भूल जाते हैं कि, या जोर दे करके नहीं बताते कि गलत के सामने झुकना नहीं है। अगर कोई उन्हें बिना वजह परेशान करता है, तो साफ साफ और कड़क आवाज़ में वो कह सकते हैं कि बंद करो, ये जो काम कर रहे हो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल
0: ना कहना भी बहुत जरूरी
1: ना
0: है।
1: कहना, और आंखों में आंखें डाल करके, और ये बोलना कि हमें जो ये आप काम कर रहे हो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, या मैं इसकी शिकायत आगे कर दूंगा, तो ये गलत नहीं है। इससे उस बच्चे को अपने को डिफेंड करने की
0: हाँ
1: आदत आएगी, वो
0: बिल्कुल,
1: सीखेगा।
0: इससे ना आधी समस्या जो है ना वो वहीं खत्म हो जाएगी।
1: बिल्कुल
0: और शिकायत कर कोई कमजोरी नहीं होती है कि हम किसी की शिकायत कर रहे हैं तो वो हम कमजोर हैं, नहीं। हमें बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि जब हमारे साथ कुछ गलत हो और हमारे मना करने से ना रुके, तो हमें टीचर या प्रिंसिपल से शिकायत कर लेनी चाहिए। हर चुगली जो है वो कमजोरी नहीं होती, बल्कि अपने अधिकारों के लिए हमें ही खड़ा होना पड़ता है।
1: बिल्कुल कॉलेज जाने वाले बड़े बच्चों के लिए यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि जो रैगिंग जो है, जैसा कि मैंने बताया, कानूनी अपराध है, अब उस पर लगाम भी लग चुकी है, तो ये कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। कॉलेज में एंटी रैगिंग सेल अब बन चुकी है, और
0: बिल्कुल
1: सरकार की हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं। डरे बिना अगर आप आवाज़ उठाते हो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है आप अपने आप को उन सारी चीज़ों से तो बचाओगे, दूसरों के साथ भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसमें भी आप उनका सपोर्ट करोगे।
0: हाँ बिल्कुल सखियों, हम ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं ना वो नन्हे पौधे हैं, वो बहुत नाजुक हैं, और उन्हें सिर्फ धूप और पानी की जरूरत नहीं है, उन्हें हमारे विश्वास की बाउंड्री चाहिए। अपने बच्चों के दोस्त बनिए, उन्हें हौसला दीजिए। जब वो घर से बाहर निकले ना, तो सिर को गर्व से ऊंचा करें, डर से झुका हुआ नहीं।
1: बिल्कुल।

0: सखियों, हम बात कर रहे हैं बच्चों की, और बच्चों के साथ जुड़ा होता है बचपन। तो समीना, हमें भी तो अपना बचपन याद आता है ना। शाम होते ही गली में गूंजती थी बच्चों की हंसी, मिट्टी की खुशबू, और वो साइकिल की, जो किराए पे साइकिल ले जाती थी ना, उसकी रफ्तार,
1: बिल्कुल
0: और माँ की आवाज कि बस अब घर आ जाओ, खाना तैयार है। आज वही शाम है, लेकिन न गली में बच्चों की चहल पहल है, न खेल का शोर। अब बच्चों की दुनिया जो मोबाइल के छोटे से स्क्रीन में सिमट रही है।
1: बिल्कुल सच कहा मधु। आज बच्चों की उंगलियां गेंद और खिलौनों को पकड़ने के बजाय मोबाइल की स्क्रीन पर दौड़ती हुई नजर आती है। खेल का मैदान खाली होता जा रहा है और आंखों की चमक स्क्रीन की रोशनी में कहीं खोती हुई सी नजर आ रही है।
0: लेकिन क्या सिर्फ बच्चों को ही दोष देना ठीक है समीना?
1: बिल्कुल नहीं।
0: हाँ, कई बार हम बड़े ही व्यस्तता में उन्हें मोबाइल थमा देते हैं,
1: हाँ
0: और हम चाहते हैं कि जो मोबाइल है वो उनसे बात करे, मोबाइल को देखे और हम फ्री रहें। तो
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे वही मोबाइल उनका सबसे करीबी दोस्त बन जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। बच्चों को मोबाइल से दूर करने का सबसे अच्छा तरीका मोबाइल छीनना नहीं है, बल्कि उन्हें अपना समय देना है। जब माँ और पापा उनके साथ बैठकर बातें करते हैं, कहानी सुनाते हैं, पार्क में ले जाते हैं या उनके साथ में खेलते हैं, तो बच्चे स्क्रीन से ज़्यादा रिश्तों से जुड़ते हैं।
0: याद रखिए, बचपन जो है वो किताबों और खेल के बीच सबसे खूबसूरती से खिलता है।
1: बिल्कुल
0: पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है मिट्टी में दौड़ना, हारना, जीतना, दोस्तों के साथ हंसना और खुलकर जीना।
1: बिल्कुल अगर हम चाहते हैं कि बच्चे अपने स्क्रीन टाइम को कम करें, तो हमें भी अपने हाथों से मोबाइल को थोड़ा सा दूर
0: बिल्कुल
1: रखना होगा,
0: जरूरी है।
1: क्योंकि बच्चे हमारी बातें कम और हमारे व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं।
0: हर दिन एक छोटा सा नियम बनाइए, कुछ समय पढ़ाई के लिए, कुछ समय खेल के लिए, और कुछ समय पूरे परिवार के साथ बैठकर, जब किसी के हाथ में मोबाइल ना हो। यकीन मानिए, यही पल बच्चों की सबसे सुंदर यादें बनाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सखियों, बचपन दोबारा नहीं आता, इसलिए बच्चों को सिर्फ अच्छी शिक्षा ही नहीं, खूबसूरत बचपन भी दीजिए, क्योंकि किताबें उन्हें सफल बनाएगी, खेल उन्हें मजबूत बनाएंगे और परिवार का साथ उन्हें अच्छा इंसान बनाएगा।

0: से क्यों, रट्टा तो मारते रहते हैं और बचपन जो है वो रट्टा मारने का ही नाम है। लेकिन
1: बिल्कुल
0: समीना, बचपन बहुत छोटा होता है ना, बहुत जल्दी गुजर जाता है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन उसकी जो यादें हैं ना वो जीवन भर साथ रहती हैं। इसीलिए बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और खुलकर जीने का मौका देना चाहिए।
1: बिल्कुल, याद रखिए हर बच्चा अलग है, उसकी गति अलग है, उसकी अपनी प्रतिभा अलग है, उसे तुलना नहीं प्रोत्साहन दीजिए, डांट नहीं संवाद चाहिए, और सबसे बढ़कर चाहिए अपनों का साथ।
0: आप अपने बच्चों के साथ मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और उनके सपनों को उड़ान देते रहिए।

0: हाँ तो मधु, छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी पताशे, तो जिंदगी में तमाशे हैं वो चलते रहेंगे, और साथ ही साथ में हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हंसगुल्ले इसी तरह चलते रहें, यही हमारी दुआ है। और अब वक्त हो चला है सखियों आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपको बता दें कि हमारी आवाज़ को आप तक पहुँचाया कंसोल पर बैठे हमारे साथी राजेंद्र चौधरी ने,
1: ट्रांसमीटर पर हमारे साथी रहे विक्रम सिंह भाटी, पीके सेन, कंट्रोल रूम से हमारा साथ दिया दिलीप सिंह परमार ने। तो अब अपनी सखी मधु बैनर्जी और
0: समीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र

0: भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने के। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले दो वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार

0: तार बनाए रखा है।
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूंका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में

0: पैराग्वे ने उलट फेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है एक प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
0: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
0: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
0: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
2: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी।
2: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे

0: शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है, यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
1: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे, चारों ओर जंगल ही जंगल थे। दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
1: जी श्रोताओ, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
0: जी
1: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए, इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
0: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
1: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओ, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है, यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते
0: जी
1: हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
0: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
1: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं।
0: जी
1: प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूं कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
0: जी तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
0: जी
1: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप सोशल मीडिया पर भी, यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
0: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
1: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
1: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
1: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
1: सबको गले लगाना।

0: गले लगाना।
1: दीपक से सीखो जितना,
0: दीपक से सीखो जितना,
1: हो सके अंधेरा हरना,
0: हो सके अंधेरा हरना।
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: सच्ची सेवा करना,
0: सच्ची सेवा करना।
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे।
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: जीवन पथ में बढ़ना।

0: प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
1: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है, हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए।

0: श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल। खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।

0: थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
1: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
0: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: काव काव काव, सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काव काव काव।
4: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
3: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो, काम काम काम।
4: क्या
6: क्या
4: क्या?
3: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
4: नीचा
3: सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना, काम।
0: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
5: जो आज्ञा महाराज।
7: दम लगा के कू।
6: हईशा।
7: दम लगा के कू।
6: हईशा।
3: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुलाकर कुप्पा, काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काम काम काम।
6: तंग मत कर तू मुझको कौ।

0: हुए जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले अरे तुम मुंह तो धोकर आ।
1: काव काव काव मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने मैं भी मदद करूंगा डटकर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
0: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको, अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
1: का का का
2: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: पपीहा ना पिए तुझा पानी।
1: काँ, काँ, काँ। अरे इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: भौ, भौ, भौ। अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भौ, भौ। कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: काँ, काँ, काँ। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काँ, काँ, शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो, इसको यही दंड दो।
4: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है।
5: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
6: भाई? मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए

0: भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
1: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
2: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब।
0: खाओ, खाओ, खाओ।
2: तुम हंस क्यों रहे हो कौए? क्या मैंने गलत कहा?
0: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
2: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल? इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
1: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
0: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: आओ, कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।

0: बिन पानी।
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
2: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी,
2: अरे
1: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम।

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य निधि चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के ठीक 3 बजे हैं। हमारी आज की यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुने युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो हाय, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मैं जिस तरीके से एकदम खुश दिख रही हूँ और हंसकर आपसे हेलो हाय गुड इवनिंग बोल रही हूँ, वैसे ही आप भी खुश होंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान होगी. और नहीं होगी तो हम किस लिए हैं? हम दो रेडियो बडीज आपके साथ जुड़ चुके हैं आज की शाम में. आज की इस शाम को और भी प्यारा और खूबसूरत बनाने के लिए मैं आपकी आज की रेडियो दोस्त और होस्ट विनीता, और मेरे साथ है
1: दोस्तों, मैं हूं अदिति मारिया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है मंगलवार, और मंगलवार को होता है हमारा स्पेशल अंताक्षरी शो। तो आपको अगर अंताक्षरी खेलने
0: जी.
1: में इंटरेस्ट है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल. और जुड़ने के लिए आपको एक नंबर डायल करना है जो कि हम अभी नहीं बताएंगे आपको. बताएंगे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए. लेकिन ये जो कॉफी वाला गाना है, ये चलाने के बाद, और आपके हाथ में आई होप कि चाय या कॉफी जरूर होगी क्योंकि शाम का वक्त है,
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना
1: और
0: उनमें चार चांद लगा दे ये गाना चलाकर. सुनते हैं ये गाना.

0: तो वैसे इतनी गर्मी है, लेकिन मतलब लोग सोचते हैं ना कि इतनी गर्मी में चाय और कॉफी कौन पीता है। जो राजस्थानी नहीं है वो तो सोचते हैं कि चाय और कॉफी
1: हाँ,
0: कौन
1: वो फिर
0: पीता
1: अवॉइड कर सकते हैं,
0: है।
1: पर हम
0: हाँ
1: राजस्थानी तो बिल्कुल अवॉइड नहीं कर
0: बिल्कुल,
1: सकते।
0: हमसे पूछिए, हम तो भरी धूप में जो है कप
1: मिर्ची
0: लेकर,
1: बड़ा
0: मिर्ची बड़ा, चाय, समोसे,
1: सब सब
0: पकौड़े,
1: खा सकते
0: बस
1: हैं
0: आप खिलाइए, चाय
1: हम
0: बना के पिलाइए बस। वैसे अदिति, तुम्हें
1: हाँ,
0: चाय या कॉफी में से क्या पसंद है?
1: चाय ज्यादा पसंद है, पर ऐसा नहीं है कि कॉफी नहीं पीती, कॉफी भी पीती हूँ, पर चाय।
0: अरे यार, तुमने मुझे

0: नहीं पिलाई चाय।
1: चलो पिला दूंगी, ऐसा क्या है।
0: चलो कोई बात नहीं, तुम पिला देना।
1: हाँ,
0: फिलहाल जो है हम नंबर बता देते हैं कि हमसे जुड़ने के लिए इनको नंबर डायल करना है, जो कि है
1: 02912553300, और हमारा दूसरा नंबर है 02912554300।
0: देर किस बात की, चाय तो पी ही रहे हैं और अंताक्षरी गेम अगर साथ में हो जाए तो नेकी और पूछ पूछ पूछ चार चार चांद लग जाएंगे आज के प्रोग्राम में। तो
1: हाँ
0: जल्दी से जल्दी नंबर डायल कीजिए, फोन उठाइए और बात कीजिए हम दो रेडियो बडीज के साथ। फिलहाल हम का आपको ले चलते हैं इस अगले प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक की ओर।

0: क्या बात है, इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के बीच ही अदिति हमारे जो आज के पहले लिसनर है वो हमसे जुड़ चुके हैं। बात करते हैं इनसे। हेलो, हाँ
1: हेलो।
0: जी नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्ते, मेरा नाम ओम प्रकाश त्यागी है।
0: जी, ओम प्रकाश जी, स्वागत है आज की यूथ अंताक्षरी में आपका। क्या करते हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैं पता मेरे दोस्तों से बोल रहा हूँ, करने को लेने
0: अच्छा
1: का काम करता हूँ मैं,
0: अच्छा, चलिए
1: बिल्डर बनाता हूँ मैं।
0: ओम प्रकाश जी, आप बड़े ही जल्दी में लग रहे हैं, तो जल्दी जल्दी जो है अपनी प्यारी सी आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा पेश कर दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। जी, आपकी पसंद का कोई भी गाना।
1: मेरा दिल दिल से सीधा है, मेरा दिल दिल से सीधा है, एक दिल बाय हाँ यही तो।
0: क्या बात है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, क्या खूब गाना गाया है आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े। नेक्स्ट टाइम फिर से
1: जी मैंने मुंह
0: जुड़िएगा।
1: पा रहे हो, जी मैंने जो मुंह पा रहे हो गाते थे।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल, और लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, इसीलिए हम आपको जो है सुनाते हैं यही एक ट्रैक, ये सुनते जाइए आप।

0: इसी बीच जो है हमारे अगले लिसनर भी हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी,
1: हेलो।
0: आपको आवाज़ आ रही है हमारी?
1: हाँ
0: हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते,
1: नमस्ते। रमेश,
0: क्या नाम है आपका?
1: मैं
0: रमेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जैसलमेर से। हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं जैसलमेर से।
0: ओहो, जैसलमेर से बात कर

0: रहे हैं आप? क्या करते हैं रमेश जी आप?
1: मैं 12th में पढ़ाई करता हूँ।
0: अच्छा, चलिए गाने सुनते हैं आप। ठीक है, फिर आपकी पसंद का कोई प्यारा सा गाना सुना दीजिए।
1: लख समझ आ नहीं पाता।
0: सुनाइए।
1: दिल समझ आ नहीं पाता।
0: मांगे तेरी खैरियत, सोना था तेरा वे झूठा, रंग दो दिलों में छूटा, ऐसे भुलाओ बरिया। ये गाना गा रहे थे रमेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नेक्स्ट टाइम फिर से जुड़िएगा। फिलहाल हम ले चलते हैं आपको अगले ट्रैक की ओर।

0: विनीता, देखो एक और कॉल आ चुका है हमारे पास,
1: क्या
0: तो
1: बात है?
0: देखते हैं कौन हमसे बात करना चाह रहा है। हेलो
2: हेलो,
0: जी, नमस्ते।
2: नमस्कार, नमस्कार।
0: आप कहाँ से
2: मैं
0: बोल रहे हो और
2: इकरामुद्दीन
0: आपका
2: बोल
0: नाम
2: रहा था।
0: क्या है?
2: मैं इकरामुद्दीन बोल रहा हूँ, ज्योति नगर चांदना बाकर से।
0: जी, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा आज ये अंताक्षरी का कार्यक्रम है, तो आपका जो भी पसंदीदा गाना है वो आप गा के सुनाइए हमें।
2: आज मेरे को देशभक्ति गाने का थोड़ा मन हो रहा था, तो इसलिए सारे जहां से आ
1: क्या बात है?
2: गया हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से आ जा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये
1: गुलशिस्ता
2: गुलशिस्ता
1: हमारा
2: हमारा
1: सारे
2: सारे
1: जहां
2: जहां
1: से अच्छा।
2: से
1: क्या बात है, क्या
2: अच्छा,
1: बात है।
0: बड़ा ही सुरीला गाते हैं आप।
2: हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा।
1: वाकई इकरमुद्दीन जी, आपने ये जो गाना गा के ना सबको ये संदेश दे दिया है कि देश के लिए प्रेम जो है एक दिन में सीमित नहीं है, देश के लिए तो प्रेम
2: बिल्कुल
1: हमेशा होना
2: बिल्कुल,
1: चाहिए। साल के
2: सबके लिए
1: तीन सौ
2: होना
1: पैसठ
2: चाहिए।
1: दिन रहना
2: हमें
1: चाहिए
2: छब्बीस
1: देश के लिए
2: जनवरी और
1: प्रेम।
2: 15 अगस्त की नहीं बात है,
1: जी
2: 365 दिन देश के लिए जान
1: बिल्कुल
2: न्यौछावर करनी
1: बिल्कुल
2: चाहिए। मैं
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इकरमुद्दीन जी, सेकंड राउंड में खेलेंगे यूथ अंताक्षरी।
2: जी,
1: ठीक है, अगला ये गाना सुनिए आप। इसमें से हम आपको एक शब्द देंगे, उस पर आपको गाना है। ठीक है,
2: कोशिश करता हूँ मैडम।
1: ओके, सुनिए गाना।

0: जी इकरमुद्दीन जी,
1: जी
0: आपका शब्द है दिल।
1: दिल
0: जी
1: दिल दिया है
0: वाह
1: जान
0: वाह वाह
1: दे
0: वाह,
1: देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए।
0: क्या बात है क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, आपका
1: थैंक यू
0: गाना
1: थैंक
0: सुनकर
1: यू
0: बहुत अच्छा लगा।
1: थैंक
0: और
1: यू।
0: नेक्स्ट टाइम फिर से आप जुड़िएगा हमसे, और अभी जो है ले चलते हैं अगले ट्रैक की। और

0: देखो विनीता, अब अगला हमारे पास कॉल आ चुका है, तो देखते हैं कौन हमसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो
1: हाँ साहब,
0: जी, आपका नाम अब और कहाँ से आप बात कर रहे हैं?
1: जोधपुर से सर, पता
0: अच्छा, जोधपुर से। आपका नाम?
1: नंबर है, पता नंबर है, इकबाल नाम है मेरा, पता
0: अच्छा,
1: नंबर में
0: इकबाल
1: रखता
0: जी।
1: हूँ।
0: तो आप म्यूजिक के काफी इंटरेस्ट लेते हैं
1: रखते हैं
0: म्यूजिक में
1: हाँ,
0: आप?
1: रखते हैं ना सर।
0: हाँ, तो जैसा कि आपको पता है, आज अंताक्षरी है हमारा प्रोग्राम, तो आपका
1: हाँ
0: पसंदीदा कोई भी सॉन्ग गीत आप सुना सकते हैं।
1: मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न
0: थोड़ा सा
1: फूल,
0: तेज गा पाएंगे आप? थोड़ा
1: थोड़ा
0: सा
1: सा, थोड़ा सा जो है ना तेज गाइए, आपकी आवाज थोड़ी धीमे आ रही है हमें। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली।
0: क्या बात है इकबाल जी, चाहे दोस्ती मिलनी चाहिए, चाहे फूल मिले दोस्ती में या फिर कांटे मिले, बस दोस्त
1: हाँ,
0: होने
1: वो तो
0: चाहिए
1: सही है, हम
0: जीवन
1: दोस्त
0: में।
1: होना
0: बिल्कुल
1: चाहिए
0: बिल्कुल,
1: जरूर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े। नेक्स्ट टाइम फिर से यूथ अंताक्षरी में जुड़िएगा। अभी हम आपको ले चलते हैं इस ट्रैक की ओर।

0: क्या बात है, इस सॉन्ग के बीच ही हमारे अगले अगले लिसनर अब जुड़ चुके हैं। हेलो, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। कोई बात नहीं, फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन हम आपको बता दें कि यूथ अंताक्षरी चल रही है और हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो यूथ है जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है वो हमसे जुड़ सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए इनको करना बस एक नंबर डायल है जो कि है
1: बिल्कुल, जो नंबर है वो है 02912553300, और हमारे दूसरे नंबर है 02912554300। तो दोस्तों, हमको इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को भी बोलिए।
0: बिल्कुल। और गाने का शौक रखने वाले तो बिल्कुल सबसे पहले कॉल कीजिए, हम आप ही का वेट कर रहे
1: बिल्कुल, ये
0: हैं।
1: अच्छा मौका है आपकी स्किल्स और डेवलप करने का।
0: और हम दो रेडियो बडीज आपके साथ जुड़े हुए हैं, अदिति एंड विनीता। स्टे ट्यून विद अस।

0: क्या बात है, जगा ले तू, जगा ले जज्बा। और हमारे अगले लिसनर में भी आज की यूथ अंताक्षरी में शामिल होने का जज्बा आ चुका है। बात करते हैं इनसे। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते,
1: नमस्ते। मेरा
0: क्या नाम है आपका?
1: नाम दिलीप,
0: दिलीप जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: न्यू पावर हाउस जोधपुर।
0: अच्छा, जोधपुर से बात कर रहे हैं, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हूँ।
0: ओके, चलो गाने सुनते हैं आप।
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए फिर, आपकी आवाज़ में अभी तो अब जो है आप बहुत यूं धीरे धीरे बात कर रहे हैं, लेकिन आई होप कि जब गाना गाएं तो थोड़ा सा तेज गाएं, जो हमें
1: ओके
0: सुनने में
1: ओके
0: थोड़ा इजी
1: बिल्कुल।
0: रहे।
1: हाँ हाँ
0: सुनाइए आपकी पसंद का कोई गाना।
1: ओ सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सताए रे।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, दूसरे राउंड में खेलेंगे अंताक्षरी।
1: जी।
0: ठीक है, आपको जो है ये गाना सुनना है ध्यान से, इसमें से आपको शब्द देंगे, उस पर आपको गाना है।
1: ओके
0: ठीक है, गाना सुनिए।

0: दिलीप जी,
1: हाँ जी, हाँ
0: जी आपने
1: जी,
0: गाना सुना?
1: बिल्कुल।
0: हाँ, तो आपके लिए जो शब्द है वो है आंखें।
1: ये आंखें देख
0: क्या बात
1: कर
0: है, क्या
1: हम
0: बात है।
1: सारी दुनिया भूल जाते, तुम्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते
0: वाह,
1: हैं। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल
0: बिल्कुल। फिलहाल हम जो हैं अंताक्षरी भूल चुके हैं आपकी आवाज सुनकर। बहुत ही प्यारा गाते
1: नहीं,
0: हैं आप, और आपने नया गाना भी
1: ये
0: गाया
1: कॉम्प्लीमेंट
0: और पुराना गाना भी
1: थोड़ा
0: गाया।
1: ज्यादा हो
0: जी
1: गया। अच्छे से
0: हाँ
1: अडेप्ट होते हैं हमारे लिसनर्स, वो इससे हम पता कर पाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और म्यूजिक का टेस्ट भी काफी बहुत अच्छा है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अभी जो है हम आपको सुनाते हैं ये ट्रैक।

0: हेलो हेलो हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं। हेलो
1: अच्छा, हाँ ठीक।
0: हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते,
1: नमस्कार मैडम।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अशोक खेमानी है मैडम,
0: अशोक जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: चौपास ने हाउसिंग बोर्ड से बोल रहा
0: अच्छा अच्छा अच्छा क्या करते हैं आप?
1: हूँ। मेरा रेडीमेड का होलसेल का काम है।
0: अच्छा, तो सर गाने तो बहुत सुनते होंगे आप।
1: जी,
0: चलिए फिर आप जो है अपनी पसंद का एक प्यारा सा नगमा सुना दीजिए।
1: मैडम वो तो सुना दूंगा, पहले अपना आपका शुभ नाम बताइए।
0: जी मेरा नाम विनीता।
1: विनीता जी, पहले कविता जी और जौहर भाई वगैरह आया करते थे, मैं
0: जी
1: तब तब से आपका श्रोता हूँ।
0: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: जी धन्यवाद।
0: आप
1: जी मेरे को फिल्म मेरा साया का गीत सुनना है,
0: बिल्कुल बिल्कुल सर सुनाइए।
1: नैनों में बजरा छाए, बिजली
0: जी
1: की चमके आए। थैंक
0: जी जी जी
1: यू। मेरे को नंबर 5 कैसे याद आ गया बेंचो, 5 साल के बाद में लगा है।

0: क्या बात है, इतना प्यारा गाना। और इस प्यारे गाने के बीच ही हमारे अगले लिसनर जो है हमसे जुड़ चुके हैं, बात करते हैं इनसे। हेलो हेलो,
1: हेलो जी, नमस्कार
0: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: जी। मेरा नाम जालाराम जी, हम बालोतरा से बोल रहे हैं।
0: जी कौन बात कर रहे हैं?
1: जालाराम जी,
0: जालाराम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: बालोतरा से
0: अच्छा, क्या करते हैं जालाराम जी आप?
1: जी। हम तो भजन भाव करते हैं ना, वो सिंधिया भजन भाव करते हैं,
0: अच्छा, मतलब
1: हारमोनियम।
0: आप भजन गाते हैं।
1: हाँ, तो वजन गाते हैं और हारमोनियम सीखते हैं।
0: अच्छा, चलिए, तो बॉलीवुड गाने भी गाते हैं आप? सुनते हैं बॉलीवुड गाने, हिंदी गाने
1: नहीं
0: सुनते
1: यार,
0: हैं आप?
1: हिंदी गाने हम तो सुनते हैं लेकिन हम गाते नहीं।
0: अच्छा, सुनते हैं पर गाते नहीं हैं, कोई बात नहीं। जो है जालाराम जी हमसे जुड़े थे और ये जो है भजन गाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अभी जो है इनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं। हम सुन रहे थे मसक कली गाना, जो कि बहुत प्यारा है। और कभी कभी ना अदिति, हमारी प्लेलिस्ट में बस ऐसे गाने चला दो और बस
2: हाँ
0: अकेले छोड़ दो, हम खुद वाइब कर लेंगे, हम
2: हाँ
0: खुद मजे
2: बिल्कुल,
0: ले
2: ऐसी
0: लेंगे। और
2: प्लेलिस्ट जो हम बना के देते हैं ना
0: हाँ,
2: हमारे लिसनर्स के लिए, वो बेस्ट होती है। अगर
0: बिल्कुल,
2: कोई जुड़ा
0: मतलब
2: हो हमसे तो
0: अगर दूसरा इंसान हमारे साथ हो ना हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। बस अपनी
2: हाँ
0: प्लेलिस्ट चलाओ और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड
2: बिल्कुल,
0: करो,
2: और उस वाइब
0: बस
2: में खो जाओ
0: खो जाओ।
2: और अगर अभी भी चाय कॉफी पी रहे तो आप उसको एंजॉय कर सकते
0: बिल्कुल।
2: हैं।
0: और अभी जो है यूथ अंताक्षरी तो चल ही रही है और हम तो बेसब्री से आपके इंतजार में बैठे हैं।
2: बिल्कुल
0: और हमारे नंबर एक बार फिर से हम आपको
2: हाँ,
0: बता देते हैं, हमारे
2: जो
0: नंबर
2: आप
0: हैं
2: जो नंबर है जिस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं वो है 02912555300, और हमारे दूसरे नंबर है 02912545300
0: क्या
2: पर।
0: बात है, अदिति ने नंबर बताया नहीं कि हमने हमारे अगले लिसनर हमसे जुड़ने के लिए रेडी हैं, बात करते हैं इनसे। हेलो,
1: हेलो जी, नमस्कार जी, गुड इवनिंग।
0: नमस्ते, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका
1: मेरा नाम सोमनाथ भाटिया जी।
0: जी? क्या करते हैं आप?
1: सर, हम रिटायर्ड पर्सन है जी।
0: अच्छा, चलिए अपनी आवाज में एक आपकी पसंद का कोई प्यारा सा गीत सुना दीजिए।
1: हाँ, चल सन्यासी मंदिर में।

0: मेरी चूड़िया दोनों साथ बजाएंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा गाते हैं आप।
0: मेरा चल सन्यासी मंदिर।
1: चलिए हम ले चलते हैं फिलहाल आपको इस अगले ट्रैक की ओर।

0: विनीता हमारे
1: हाँ
0: साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हेलो हेलो, शायद कोई प्रॉब्लम है और वो कनेक्ट नहीं कर पाए। हेलो
2: हेलो
0: जी, नमस्ते,
2: जी, नमस्ते मैडम। मेरा
0: आपका नाम?
2: नाम उमा सिंह,
0: अच्छा जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: शास्त्री नगर से। हाँ
0: अच्छा, तो आप रेडियो सुनते हैं?
2: जी मैडम।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आपको पता है कि आज अंताक्षरी है, तो आपको अपना पसंदीदा गीत आपको सुनाना होगा। थोड़ा सा आप रेडियो से दूर हो जाइए और जो भी आपका पसंदीदा गीत है वो हमें सुनाइए।
2: जी मैडम।

0: कह दिया।
1: जो भी है सब तेरा, तेरे हवाले कर दिया।
0: क्या बात है, क्या बात है। और हमने हवाले कर दिया है, अगला राउंड आपके नाम। बहुत बहुत प्यारा गाते हैं आप। नेक्स्ट राउंड में खेलेंगे अंताक्षरी,
1: जी मैडम,
0: ठीक है। अगले राउंड में जो है आप ये गाना सुनिए, इसमें से आपको एक शब्द देंगे, उस पर आपको गाना है, ठीक है
1: जी मैडम।
0: जी।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, आपका शब्द है नैना।
1: नैना।
0: जी, इससे जुड़ा एक गीत आपको गाना है। और थोड़ा सा आप जो है ना रेडियो से दूर रहिए, क्योंकि आवाज़ जो है डबल डबल आ रही है, तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हमारे पास।
1: मैडम क्या सब गया मैडम?
0: नैना।
1: तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं, जब नैना बातें करते हैं दिल मुलाकातें करते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत गाते हैं आप। और नेक्स्ट टाइम फिर से हमसे जुड़िएगा यूथ अंताक्षरी में। फिलहाल हम ले चलते हैं आपको इसी ट्रैक की ओर।

0: गाना काफी अच्छा चूज किया आपने,
1: बिल्कुल, और कोशिश भी अच्छी थी।
0: और सच में पल दो पल के ही हैं हम लोग यहाँ पर, और बस खुश खुश होकर और हंसी मजाक में और ऐसे ही जिंदगी काटनी है हमें, हंसकर खुलकर जीना है। और इसी गाने को लेकर हम जो हैं आपको नेक्स्ट राउंड में लेते हैं, तो नेक्स्ट राउंड में खेलेंगे यूथ अंताक्षरी।
1: यस मैम।
0: ठीक है, अगला गाना सुनिए आप, इसमें से आपको एक शब्द देंगे, उस पर आपको गाना है। ठीक है
1: ओके मैम।
0: जी, सुनिए।

0: विनीता हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं,
1: क्या बात
0: आइए
1: है?
0: उनसे बात करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हेलो हेलो
2: हेलो
0: जी, नमस्ते,
2: मैडम, विनय बोल रहा हूँ जोधपुर से।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम युवानी में। आप कहाँ से बोल रहे हैं
2: जोधपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी? तो आप क्या करते हैं?
2: मैडम मेरी दुकान है मैडम।
0: अच्छा, तो आप रेडियो भी सुनते ही होंगे फिर।
2: यस मैडम, अभी चल रहा है मैडम।
0: अच्छा, तो जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा युवानी का स्पेशल अंताक्षरी कार्यक्रम है, तो आप
2: हाँ
0: अपना पसंदीदा गीत जो है वो हमें सुना दीजिए।
2: ठीक है मैडम। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है।
0: आगे
2: आगे मैडम पूरा नहीं आया।
1: वैसे

0: हेलो।
1: हाँ मैम,
0: हाँ, तो जैसा कि आपने गाना सुना, इसमें से हम आपको शब्द देते हैं, वो है पिया।
1: पिया पिया पिया मिलन की रुत आई।
0: सुनाइए।
1: दूसरा मैडम कोई और सुन।
0: आप जो है अब दिल दिल शब्द से गाएंगे।
1: ठीक है मैडम। हाँ मैडम, दिल दीवाना दिल
0: क्या
1: सजनों
0: बात
1: के
0: है,
1: माने ना,
0: ये
1: ये
0: पगला
1: पगला
0: है,
1: है
0: समझानी से
1: समझाने से समझे
0: समझे ना।
1: ना।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा गाना गाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप सुन रहे हैं यूथ अंताक्षरी, और अब आपको ले चलते हैं इस ट्रैक की ओर।

0: क्या बात है, ऐसे प्यारे प्यारे से गाने चल जाए ना बैकग्राउंड में, तो फिर और तो क्या ही चाहिए, बस गाने चल जाए और वाइब करें हम, और उस पे अपना मूड जैसा भी हो ना
1: बिल्कुल
0: ठीक हो ही जाता है.
1: बिल्कुल। और मंडे के बाद जो ट्यूसडे है वर्किंग डे हो जाता है, तो काफी स्ट्रेसफुल भी हो सकता है लोगों के लिए। तो ऐसे में ऐसी प्लेलिस्ट जो है हमारी,
0: रखनी चाहिए,
1: बिल्कुल, और ये
0: बिल्कुल.
1: मूड लाइट कर देती है, आपको स्ट्रेस फ्री कर देती है,
0: हाँ
1: और आपको थोड़ा डांसिंग मूड में भी ले आती है।
0: बिल्कुल दोस्तों. और आप मैं देख रही हूँ अदिति के पास बैठी हूँ कि ये गाने को कैसे एंजॉय कर रही थी, और अभी जो कितनी खिली खिली लग रही है, और आई होप कि आप भी
1: बिल्कुल
0: खिले खिले हो गए होंगे, खुशी होगी आपको भी, आपके चेहरे पर स्माइल होगी. और इसी स्माइल के साथ ही हमसे जो है अगले लिसनर जुड़ चुके हैं. हेलो हेलो हेलो.
2: हेलो। हाँ मैडम,
0: जी नमस्ते,
2: नमस्ते मैडम।
0: क्या नाम है आपका?
2: मैं वेलाराम प्रसाद बोल रहा हूँ, पाली से। हाँ
0: अच्छा, पाली से बोल रहे हैं आप,
2: मैडम,
0: क्या करते हैं?
2: हम सिलाई का काम करते हैं,
0: अच्छा
2: कपड़ा
0: अच्छा
2: सीते हैं,
0: प्रजापत
2: सिलता
0: जी,
2: है।
0: फिर तो आपके पास जो है हमेशा रेडियो चलता होगा या फिर गाने चलते ही रहते होंगे.
2: काफी टाइम से है, बहुत चल रहे हैं,
0: अच्छा, चलिए फिर आपकी
2: आपकी
0: पसंद
2: आवाज बहुत
0: का
2: अच्छी है।

0: आपकी आवाज बहुत मधुर है मैडम, सुनने में मजा आता है, रेडियो सुनने में बहुत।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो है हमें सुनने का मौका चाहिए, और आप जो है अपनी आवाज में सुनाइए एक प्यारा सा गीत।
0: हाँ सुनो मैडम।
1: जी जी
0: मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, रंग लाल लाल बहादुर से। इतनी आ रहा मैडम।
2: काफी अच्छा आपने कोशिश करी और काफी अच्छा गाते भी हैं आप, और आपने वापस देशभक्ति की जो है भावना हम सब में जगा दी।
1: बिल्कुल।
2: तो जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा अंताक्षरी का जो है, इसमें आपको अगर सेकंड राउंड में जाना है तो आपको हम एक गाना देंगे और उसमें से एक शब्द देंगे और आपको उस शब्द पे गाना गाना है।
0: ओके मैडम, ओके
2: ठीक है। तो चलिए आप सुनिए ये गाना।
0: हाँ मैडम।
3: I don't know.

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, आपका शब्द है
2: कसम
1: कसम कसम तेरी कसम। ठीक है मैडम।
2: कोई बात नहीं, चलिए। बहुत अच्छी कोशिश की आपने और अच्छा गाते भी हैं
1: मैडम
2: आप।
1: काफी सालों से आकाशवाणी में मैं बात करता हूँ। पहले वो
2: जी
1: बोलते थे, वो उसकी भी आवाज अच्छी लगती थी, काकू की आता काकू आते थे।
2: जी जी जी जी क्या बात है। अच्छा, आप जो है काफी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप जो है अपनी पसंद का एक गाना सुनाइए, एक और।
1: और सुनाऊं?
2: जी
1: हाँ सुनाऊं। ये
2: हाँ,
1: दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, टूट
2: तोड़ेंगे
1: गए तुम अगर हमारा साथ न छोड़ेंगे।
2: तुम मगर। क्या बात है, क्या बात है।
1: क्योंकि
2: बिल्कुल
1: आपने
2: बिल्कुल,
1: गलती
2: हम
1: है, क्योंकि
2: आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और ऐसे ही जो है आपको
1: आपने
2: हमारी प्लेलिस्ट से खुश करते जाएंगे, और हमारी ढेर सारी बातों से आपको खुश करते जाएंगे। ऐसे ही हंसते रहिए आप, हेल्दी रहिए आप, और ले चलते हैं आपको अगले ट्रैक की ओर।

0: दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की युवानी म्यूजिकल अंताक्षरी स्पेशल यहीं समाप्त होता है। और विनीता, जैसे कि जो अंताक्षरी होती है ना, वो उसका एक अलग ही मजा होता है। एक गाने से दूसरा गाना, एक याद से दूसरी याद, और इसी तरह संगीत हमें एक दूसरे से जोड़ता चला जाता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने भी घर पर हमारे साथ गाने गुनगुनाए होंगे और इस म्यूजिकल सफर का पूरा लुत्फ उठाया होगा।
1: बिल्कुल, और अभी भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं हमसे बात करने के लिए, लेकिन जो समय है वो उसमें हम पाबंद हैं, हम नहीं ले सकते आपके कॉल। लेकिन नेक्स्ट ऐसी ही प्यारी सी शाम में हम फिर से जुड़ेंगे। महीने के पहले तीसरे और पांचवें मंगलवार को यूथ अंताक्षरी होता है, आप उस वक्त हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज दीजिए हमें इजाजत। हम दो रेडियो बडीज आपके साथ जुड़े हुए थे, मैं विनीता और मेरे साथ थी
0: मैं अदिति मौर्या। आज प्रस्तुति थी राजेश लामरो द्वारा और संयोजन था मनीष सोलंकी का।
1: आज कंसोल पर हमारे साथ थे विनीता जैन। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत हैं समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का

0: वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब चार दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले दो वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के छह मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी छह मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. India has signed 28 migration and mobility partnership agreements with over 26 countries. Speaking at the Human Resource Mobility Forum in New Delhi, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said the collective responsibility of nations is to combat illegal migration, exploitative practices, fraudulent intermediaries and human trafficking. He said India's commitment to safe and legal mobility is reflected in the e-migrate platform.
3: One key pillar which has brought about a transformation in the governance of migration has been the use of digital systems and tools. India's commitment to safe and legal mobility is reflected in the e-migrate platform, and since its inception, more than 5 million immigration clearances have been issued. This digital ecosystem has become a global example of leveraging technology to protect migrant workers while facilitating mobility.
2: President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth should not work only for their own progress, but also strive to uplift the weaker sections and

आज शाम 7 बजे से आईसीसी वीमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज के मध्य द ओवल लंदन में खेले जाने वाले सेमी फाइनल मैच का सीधा प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

कल प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की जानकारी। कल सवेरे 8:30 से प्रसारित होगा कार्यक्रम नमस्कार। दिन में 1:05 पर कृषक वर्ग के लिए होगा कार्यक्रम कृषि जगत।

ग्रामीण महिला श्रोताओं के लिए कार्यक्रम गणगौर होगा दोपहर 1:15 पर। संध्याकालीन सभा के आरंभ में होगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। चौपाल सजेगी शाम 7:00, 7:30 पर होगा कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज। साहित्य सुधा, ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9:15 पर, जिसमें आप सुनेंगे राजस्थानी कहानी पाठ। कहानी का शीर्षक है हिए ऊपर लो हाथ, हिए ऊपर लो हाथ। कहानीकार हैं डॉक्टर माधो सिंह इंदा।

अभी आप सुन रहे थे एक कार्यक्रम विवरण, जिसमें आज प्रसारित होने वाला शेष कार्यक्रम और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की हमने आपको जानकारी दी।

0: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। शाम के 6:30 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: और बहुत जल्द आपसे पुनः
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। यूरोबैंक संस्थया ग्रीसतः भारतं प्रति यूपीआई आधारित धनप्रेषण सेवा समारब्धा। उपक्रमोयम् ऐतिहासिकः वर्तते इति वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः सबलम् अवोचत्। पाकिस्तानस्य FATF संस्थायाः ग्रे लिस्ट इत्यस्य निरीक्षणस्य आलोचनायाः अनन्तरं भारतेन एतां संस्थां प्रति स्वीय दृढ़ समर्थनं पुनः प्रकटीकृतम्। जनरल धीरज सेठः जनरल उपेन्द्र द्विवेदीतः भारतीय सेनायाः 31वें सेनाध्यक्षत्वेन पदभारं गृहीतवान्। अमेरिका ईरानयोः शान्तिवार्तायाः भविष्यं प्रति अनिश्चितता वर्तते यतो हि तेहरान प्रशासनेन अमेरिका राष्ट्रपतिनः ट्रम्पस्य दोहा नगरे मेलनस्य विषयः दृढतापूर्वकं खण्डितः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन उत्तर प्रदेश बिहार मध्य महाराष्ट्र कोंकण गोवा राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। अपि च क्रीडावार्तासु फीफा

0: तःपूर्वं कस्यापि व्यापकस्य वा अन्तिमसन्धेः उपरि चर्चा नैव करिष्यते। अद्य दिल्लीं कर्नाटकं मेघालयं महाराष्ट्रं समेत्य झारखण्ड राज्येषु मतदातृ सूचीनां विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमस्य तृतीय चरण समारब्ध। उपक्रमस्यास्य अन्तर्गतं देहल्यां 13,000+ मतदान केन्द्र स्तरीयाधिकारिण आगामि मासस्य 29 दिनांकं यावत् प्रत्येकं गृहं गत्वा मतदातृ सूचीनां प्रमाणीकरणाय नवीकरणाय च पूर्वमुद्रितानि प्रपत्राणि प्रदास्यन्ति। देहल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारी अशोक कुमारः ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् अवोचत् यत् मतदातृ सूचौ आक्षेपान् प्रस्तोतुम् अगस्तमासस्य 5 दिनांकतः सितम्बर मासस्य 4 दिनांकपर्यन्तं समयः निर्धारितः अस्ति। अन्तिमा मतदातृ सूची अक्टूबर मासस्य 7 दिनांके प्रकाशिता भविष्यति। कर्नाटक राज्ये अस्मिन् अभियाने राज्यस्य 31 निर्वाचन कार्यालयैः सह सम्बद्धाः 59,000+ बीएलओ अधिकारिणः नियुक्ताः सन्ति। मेघालय राज्ये च ईस्ट खासी हिल्स जनपदस्य उपायुक्तः अभिलाष वरनवालः सूचितवान् यत् बीएलओ अधिकारिणः जनपदे स्थितेषु सर्वेषु 21,000 मतदान केन्द्रेषु गत्वा तेभ्यः मतदातृभ्य प्रपत्राणि वितरिष्यन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन आगामि 2 दिवसेषु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवाषु अतिवृष्टेः कृते नारंगी वर्णीया संचेतना प्रकटिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य सिक्किम, असम, मेघालय, केरल, माहे, उपहिमालयी, पश्चिम बंगालस्य च भागेषु संभाव्यन्ते। अपरपक्षे विभागेन अद्य दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ इत्यादिषु राज्येषु उष्ण तरंगस्य पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर न्यगादीत् यत् भारतेन 26,000+ देशैः सह 28 प्रवासन गतिशीलता सहभागिता सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि विहितानि। तेन अवैध प्रवासं शोषणात्मक प्रथाः कपटपूर्त मध्यस्थतां च प्रतिरोद्धुं राष्ट्राणां सामूहिक उत्तरदायित्वं प्रति विशेषरूपेण उपादिष्टम्। हूल दिवसावसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेश शासनस्य न्यायस्य विरुद्धं दृढतया समुपस्थितेभ्यः सिंधो काहू, चंद भैर, फुलो झानु इत्यादिभ्यः सहैव सर्वेभ्यः वीर जनजातीय जनेभ्यः भावपूर्णां श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। फीफा विश्वकप स्पर्धा मालिकायां मोरक्को पैराग्वे देशौ राउंड ऑफ 16 चरणे स्वस्थानं सुरक्षितवन्तौ। मैक्सिको देशस्य ग्वाडालूप नगरे आयोजिते रमणीय द्वन्द्वे मोरक्को दलेन नीदरलैंड दलं 3-2 इत्यंकैः पराजितम्। अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य टेक्सास प्रान्ते आइवरी कोस्ट तथा नॉर्वे इत्यनयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार रिले होंगे।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने को कहा। सड़क हादसों के घायलों की मदद करने और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने की अपील की। वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से देशभर में लागू होगा, ये मनरेगा का स्थान लेगा। जनरल धीरज सेठ ने देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा की गहनता से जांच की जाएगी और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के प्रवेश के आसार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। देशभर में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की लागत से इनके सुधार का काम शुरू किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग

0: मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्री गडकरी ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से सड़क हादसे के घायलों की मदद करने और उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचाने को कहा।
1: हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं तो हम तुरंत उनको अगर अस्पताल लेके जाएंगे तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं, और इसलिए हमने एक योजना शुरू की है कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद, पहले लोगों के मन में गलत फहमी है कि पुलिस पीछे लग जाएंगे, तकलीफ होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया, डिपार्टमेंट ने भी निर्णय किया है कि कोई तकलीफ नहीं होगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। आप तुरंत उसको उठाइए, किसी भी अस्पताल में पहुंचाइए, उसको मदद करने वाले व्यक्ति को हम राहगीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार मिट्टी और उसके लिए जरूरी उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप विकसित कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री आज हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने किसानों से मिट्टी में उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने का आग्रह किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार अल नीनो प्रभाव से कम वर्षा की आशंका के मद्देनजर बचाव के तरीकों पर विचार कर रही है।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है, और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अल नीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी देशभर में कल से लागू होने जा रहा है। ये देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समावेशी और मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वीबीजी रामजी पर पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
3: वीबीजी रामजी मनरेगा का स्थान लेगा। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिन से बढ़ाकर अब एक साल में 125 दिन का गारंटीशुदा रोजगार मिलेगा। पहले श्रमिकों को 15 दिन में भुगतान किया जाता था, अब इसमें साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। ये राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। वहीं निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति का वैधानिक प्रावधान रहेगा। कृषि मौसम में बुआई और कटाई के लिए मजदूरों की कमी नहीं हो, इसके लिए 60 दिन की राहत दी गई है। ये योजना ग्रामीण आय में बढ़ोतरी और आजीविका सुरक्षा को सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
0: वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के प्रावधानों के अनुसार कल से काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक विश्राम काल रहेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सेवानिवृत्त हो गए। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं और व्यावसायिकता को कायम रखते हुए ऊंचाइयां छुएगी। सेना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सैन्य बलों को उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से शक्ति मिलती है।
4: भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: सेना की दक्षिण पश्चिम कमान सप्तशक्ति के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह भी आज सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने जयपुर सैन्य स्टेशन के प्रेरणा स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि लगभग 4 दशकों की सैन्य सेवा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर और पश्चिमी सीमा पर कई अहम और चुनौतीपूर्ण कमान और स्टाफ जिम्मेदारियां निभाई। इसके अलावा उन्होंने इन्फेंट्री डिवीजन और डेजर्ट स्ट्राइक कोर की जिम्मेदारी भी कामयाबी के साथ पूरी की। नई दिल्ली में कल हुए ऐतिहासिक यमुना जल समझौते के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर आगमन पर

0: आज उनका शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस समझौते से प्रदेश में जल सुरक्षा और समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शेखावाटी क्षेत्र के लाखों परिवारों के जीवन में यह समझौता खुशहाली का नया अध्याय लिखेगा, साथ ही विकसित राजस्थान की मजबूत नींव बनेगा। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार जनता से किए हर वादे को पूरा करने की कोशिश कर रही है।
1: जनता के जो काम है वो हम कार्यकर्ता और हमारी सरकार की सबकी प्राथमिकता है, हमें उनको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमें यह विचार भी करना चाहिए क्योंकि आपने देखा है पड़ोसी राज्यों में विकास की गति हमसे ज्यादा है, विकास की रेस में आगे चलते हुए हमारे राजस्थान को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। और मेरे भाइयों, उस विश्वास को हमें कायम रखते हुए हमें जनता के बीच में जाना है, सामाजिक सरोकार के कार्य हों, सार्वजनिक कार्य हों, उनको बताना है और बताना ही नहीं उनको करवाना है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा और मरम्मत कार्यों को लेकर आज जयपुर में समीक्षा बैठक हुई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने बैठक में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी स्थिति में जर्जर और असुरक्षित भवनों का उपयोग नहीं किया जाए। श्री यादव ने सभी स्कूल भवनों की गहनता से जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में 2000 से ज्यादा विद्यालयों से संबंधित विकास और निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वहीं चालू वित्त वर्ष में करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण और विकास के काम करवाए जाएंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में होगा। 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। ये सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है। नेस्कॉम और MNIT जयपुर इसके नॉलेज पार्टनर है। सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर NCEG प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न नवाचारों की लॉन्चिंग होगी। सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए नवाचारों और डिजिटल सेवाओं को साझा करने में ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा।
2: राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है कि ई गवर्नेंस राज्य में प्रमोट हो। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने प्रेजेंट किए जाएंगे इनको रेप्लिकेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम आदमी को किस प्रकार से सरकार और आम आदमी के बीच में जो नजदीक टू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं इस प्रयास करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिसी है अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, इसका मतलब है कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको रियलाइज करने में ये कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: सम्मेलन के बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रदेश में अगले 3-4 दिनों में मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 से 4 जुलाई के बीच राजस्थान में मॉनसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बरसात भी हो सकती है। हालांकि फिलहाल कई स्थानों पर भीषण गर्मी और उमस का असर है। बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ। बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और फलौदी में भी दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। उधर बाड़मेर में आज धूल भरी आंधी चली। और अंत में मुख्य

0: समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने को कहा। सड़क हादसों के घायलों की मदद करने और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने की अपील की। वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से देशभर में लागू होगा। ये मनरेगा का स्थान लेगा। जनरल धीरज सेठ ने देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा की गहनता से जांच की जाएगी और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के प्रवेश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से धौलपुर जिले की

0: सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा की गहनता से जांच की जाएगी और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के प्रवेश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख गौरव शर्मा ने तैयार किया है। जिले में जून माह के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, कृषि और जनकल्याण से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रशासनिक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा और क्रियान्वयन जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में सामूहिक योगाभ्यास के आयोजन हुए। मुख्य समारोह मचकुंड रोड स्थित परशुराम धर्मशाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। योग अभ्यास का संचालन पतंजलि योग पीठ से जुड़े योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर योग के महत्व और नियमित योग अभ्यास के लाभों की जानकारी दी गई। जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और न्यायालय परिसरों में भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष योग दिवस कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। धौलपुर जिले से गुजरने वाले आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है। जिला प्रशासन, NHAI और निर्माण कंपनी के बीच सहमति बनने के बाद किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। इससे परियोजना का रास्ता साफ हो गया है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की संभावना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले भर में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में 2 लाख से अधिक बच्चों को अभियान के तहत शामिल किया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष बूथ लगाए गए। इसके बाद स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इन दिनों वन्य जीवों की गतिविधियां बढ़ी हैं। विभिन्न वन क्षेत्रों से बाघों का मूवमेंट लगातार दर्ज किया जा रहा है। हाल ही में एक मादा बाघ ने वन क्षेत्र में गश्त कर रहे एक वनकर्मी पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। वन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में हॉकी मैत्री मैच आयोजित किया गया। मैच का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना और खेलों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना था। खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतियोगिता में भाग लिया। रीनीट परीक्षा जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 2000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के दौरान सुरक्षा और निगरानी के विशेष प्रबंध किए गए। प्रशासन और परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से व्यवस्थाओं की निगरानी की। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस सप्ताह के अवसर पर जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान रैलियां, शपथ कार्यक्रम, संगोष्ठियां और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। जिला प्रशासन ने आमजन से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत पहले चरण के दौरान मकान सूचीकरण और आवास गणना काम में धौलपुर जिले ने राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। जिला प्रशासन ने इसे टीम वर्क और बेहतर समन्वय का परिणाम बताया। जिले की युवा क्रिकेट खिलाड़ी रजत बघेल का भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। विकेट कीपर के रूप में उनका चयन होने पर जिले में खुशी का माहौल है। भारतीय टीम इन दिनों श्रीलंका दौरे पर है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत सरकारी और निजी संस्थानों में पौधे लगाए गए। विभिन्न सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों ने इसमें भागीदारी की। जिले में मुहर्रम का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों से ताजिए निकाले गए और निर्धारित मार्गों से होते हुए कर्बला तक पहुंचाए गए। तीजा जुलूस के दौरान युवाओं ने पारंपरिक कर्तव्यों का प्रदर्शन किया। वहीं जिला मुख्यालय पर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी।

0: जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनताओं सड़कों माथे हिफाजत ने बधावन सारू कहो। सड़क हादसा में जख्मी लोगों की मदद करण अरवाना टेमसर अस्पताल पुगावन री अपील कीनी। वीबीजी रामजी कानून 2025 कालों देश भर में लागू भेजावेला, मनरेगा री ठोड़ लेवेला। जनरल धीरज सेठ देश रा 31वां सेना अध्यक्ष रा ओहदारो कामकाज संभाल्यो। राज्य री सगली सरकारी स्कूलां रा भवना री हिफाजत रा लिहाज गहरी जांच करी जावेला। और प्रदेश में आवता 2-3 दिन में चौमासा री बिरखा शुरू होवण रा आसार। समाचार सागे में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। देश में हादसा वेवण और जमीन धंस जावण री शंका वाली सड़कां ने पिछाण करी ची है। केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रूपया खर्चों आरा सुधार रो काम शुरू कीनो है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में सड़का माथे हिफाजत रे बारा में राखी जाए कार्यक्रम में आ जानकारी दीनी। गडकरी कहो के उचित निशान लेन मार्किंग और अंडरपास बनावन सागे अंतर्राष्ट्रीय मानकान मुजब सड़क इंजीनियरिंग काम लेवन री कोशिश करी जा रही है। श्री गडकरी सड़का माथे हिफाजत ने बधावो देवण में जनता री भागीदारी बधावण और मोटर गाड़ियां चलावण वालाओं यातायात नियमों री पालना करण री अरज कीनी। वह लोगों सड़क हादसा में जख्मी वेवण वाला री मदद करण अरवाने सही भगत परा अस्पताल पुगावण री अरज कीनी।
1: हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं तो हम तुरंत उनको अगर अस्पताल लेके जाएंगे तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। और इसलिए हमने एक योजना शुरू की है कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद पहले लोगों के मन में गलत फहमी है कि पुलिस पीछे लग जाएंगे, तकलीफ होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया, डिपार्टमेंट ने भी निर्णय किया है कि कोई तकलीफ नहीं होगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। आप तुरंत उसको उठाइए, किसी भी अस्पताल में पहुंचाइए, उसको मदद करने वाले व्यक्ति को हम राहगीर कहेंगे और उसको 25,000 रूपये का अवार्ड देंगे।
0: सरकार मिट्टी और वहां सारू जरूरी खाद री मात्रा री जानकारी देवण बाबत मोबाइल ऐप विकसित कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा रा हिसार माए खेत बचाओ अभियान रा समापन समारोह माए आ जानकारी दीनी। वह किसानाओं मिट्टी री उत्पादकता बनाई रखण सारू खाद और कीड़ा मारण री दवाइयां जरूरत रा आधार काम लेवण री अरज कीनी। कृषि मंत्री कहो कि सरकार अल नीनो रा असर कम बिरखा वेवण री शंका न ध्यान रखता थका जरूरी इंतजाम कर रही है।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: देश में काल 1 जुलाई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी लागू भेजावेला। आ देश रा गांवई हलका माए माली व्यवस्था ने समावेशी और मजबूत बनावण सारू मील रो पत्थर साबित भेला। वीबीजी रामजी रा बारा माए पेश है न्यूज डेस्क सालेहा गाजी री रपट।
3: वीबीजी रामजी मनरेगा री ठोड़ लेवेला। इरा तहत गांवाई हलका माए लोगा ने 100 री बजाय 125 दिन रा काम री गारंटी मिलेला। वीबीजी रामजी रा तहत मजूरा ने हर हफ्ता मजीरू रो चुकारो सीधो खाता माए करियो जावेला। तय मियाद माए काम मुहैया नी करावन री सूरत माए बेरोजगारी भत्ता मजूरी रा चुकारा माए मोड़ो वेवन परा क्षतिपूर्ति रो वैधानिक प्रावधान करियो जावे है। खेती बाड़ी री रुत माए बुआई कटाई सारू मजूरा री कमी रोकण 60 दिन री राहत दिरी जी है। वीबीजी रामजी गावाई हलका माए आमदनी बधावण और काम धंधा री हिफाजत मजबूत बनावण री दिशा माए खास जतन है।
0: वीबीजी रामजी 2025 रा प्रावधान रे मुझे

0: साबित फैला।
1: राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है कि ई गवर्नेंस राज्य में प्रमोट हो। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, इनको रेप्लिकेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम आदमी को किस प्रकार से सरकार और आम आदमी के बीच में जो नजदीक टू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, इस प्रयास करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिसी है, अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, इसका मतलब है कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको रियलाइज करने में ये कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: सम्मेलन रबारामाई और ब्यूरो माणा खबर नवी सु।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रदेश में आवता 3-4 दिन में चौमासा री बिरखा स्वरूप एवं रात चोखा हालात बनियोड़ा है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र 2-4 जुलाई बीच राज्य में चौमासा री बिरखा स्वरूप एवं रा आसार जताया है। इन दौरान प्रदेश रा लंकाऊ और लंकाऊ उगनी हल्का माए आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए बढ़ोतरी री संभावना है। कोटा और उदयपुर संभाग माए कठे कठे भारी बरसात रा आसार है। फिलहाल कई छोड़ा जबरदस्त गर्मी और उमस रो असर बनियोडो है। लाडला 24 घंटा माए श्री गंगानगर माए पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। बाड़मेर माए आज आंधी चाली। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनताओं सड़का माथे हिफाजत ने बधा वन सारू कहो। सड़क हादसा माए जख्मी लोगा ने मदद करण अरवाना टेम सर अस्पताल पुगावन री अपील की नी। वीबीजी रामजी कानून 2025 काल देश भर माए लागू है जावेला। जनरल धीरज सेठ देश रा 31वां सेना अध्यक्ष रा होदारो कामकाज संभालियो। तजरी सगली सरकारी स्कूला रा भवनारी हिफाजत रा लिहाज गहरी जांच करी जावेला। और प्रदेश माए आवता 2-3 दिन माए चौमासारी बिरखा स्वरूप वन रा आसार। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। अब आईसीसी वीमेन्स 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाला मैच द ओवल लंदन में सेमीफाइनल मैच का जीवंत प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।
4: दूसरे के सामने हैं, बहुत बड़ा मुकाबला है खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर वो जीतते हैं तो ये

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है कर्मा।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत, गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सेना।
1: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

इल्जाम इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं अनजान, संगीत है बप्पी लहरी का।

जवानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन।

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म

0: संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: हर जाई इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है निदा फाजली, धुन है राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जयमाला।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत आज पॉप एक्सप्रेस में सुनिए कुछ पॉप गीत। आइए सुनते हैं केके और महालक्ष्मी की आवाजों में विशाल ददलानी का लिखा गीत। संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

सावन की चाबी है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस में कुछ पॉप गीत।

0: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं नाटिका उनके महबूब। लेखिका हैं बिमला रैना, निर्देशक लोचन बख्शी।
1: मंजू, ओ मंजू, अरे मंजू कहाँ हो भाई, जल्दी आओ।
2: हाँ है शील, बस जब आती है तो आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है।
1: आखिर ऐसी क्या बात हुई जो आज तेरी आंखों में बिजलियाँ कौन रही
2: है? अरे बिजली बिजली कहाँ कौन थी, मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि बहुत मजा आया।
1: तू इतना ही जान कर रुक जा, नहीं तो
2: नहीं तो
1: नहीं तो मजे में दर्द भर जाएगा। अब तेरी शादी हो जाएगी।
2: शादी वादी बच्चे बच्चे मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि लाइफ इज वंडरफुल फॉर मी।
1: बात सुनो, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है लेकिन मैं तो अभी इंडिपेंडेंट हूँ। तुम दोनों को बारी बारी एक दूसरे का हुक्म मानना पड़ता है, पर मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता।
2: हाँ मेरा हुक्म मेरा राजा जरूर मानता है।
1: राजा? कौन राजा?
2: है एक राजा। हाय काश तुम भी चलती मेरे साथ टेनिस मैच में, इतना मजा आया कि।
1: मैं तो चाहती हूँ तू अब जल्दी से जल्दी अपना मैच बना ले। कितने रिश्ते आए पर तू अभी अकेली ही घूमती है। मैं पूछती हूँ आखिर तुझे कैसा लड़का चाहिए?
2: लड़का कैसा लड़का? जैसा मेरा राजा है।
1: अरे रे रे, ये किस राजा महाराजा के सपने देख रही है तू?
2: अपने राजा के। ओ मंजू हाउ ही लव्स मी।
1: हु? कौन? हु लव्स यू? कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करता है, किसका बोटा है, किसका पोता है?
2: ओफो, तुम्हारे सवालों की तो बढ़ बढ़ती ही जा रही है, मेरे दिमाग में फ्लड आ गया। तो पहले किस बात का जवाब दूं? मुझे बताओ नहीं तो डूब जाऊंगी।
1: ओहो, उसके खानदान का भी कुछ पता है?
2: अरे मंजू जी जी, उसका खानदान पानदान तीकदान सबका पता है। मेरा राजा ऐसा वैसा नहीं है, भगवान कसम वो तो अकेला कमरे में दरवाजे पर टकटकी लगाए मेरे इंतजार में बैठा होगा।
1: टकटकी लगाए? उसे अपने साथ नहीं ले गई थी?

0: मैच देखने गई थी
1: दीपक का। बहुत अच्छा खेला, वो यूनिवर्सिटी का चैंपियन बन गया है।
0: दीपक? कौन दीपक?
1: अब कौन सा दीपक या किसका दीपक है ये मैं क्या जानूं। वहाँ सब बकअप दीपक, वेल डन दीपक, लवली शॉट दीपक कह रहे थे, तो मैं जान गई उसका नाम दीपक है बस।
0: सुन, कहीं हमारा दीपक तो नहीं है?
1: ये तो मैं नहीं जानती कि वो किसका दीपक है,
0: पर आपका घर रोशन करते कभी नहीं देखा उसे?
1: नहीं देखा तो क्या हुआ? सुन, वो कुछ गोरा गोरा सा, कुछ लंबा सा, हसोड़ सा था।
0: अब मैंने गोरा वोरा लंबा उम्बा हसोड़ सोड़ की बात तो ठीक से देखी नहीं, पर हाँ टेनिस बहुत अच्छा खेलता है।
1: तो क्या आंखें बंद करके टेनिस मैच देख रही
0: थी? नहीं, आंखें तो खुली थी पर उसके खेल पर लगी थी।
1: अभी याद करती हूँ,
0: हाँ कुछ गोरा गोरा लंबा सा ही है, पर आपके घर तो शायद मैंने कभी नहीं देखा उसे।
1: तुझे मेरे पास आए अभी कौन ज्यादा दिन हुए हैं, और फिर तुझे अपने राजा से फुर्सत कहाँ है? आता है तीज त्योहार पर।
0: अच्छा, मुझे क्या मालूम, जहाँ भी जाऊँ दिखते तो रहते हैं पर ठीक से कभी बात नहीं हुई, नहीं तो ये तो पता चल ही जाता कि वो आपके दीपक हैं। अच्छा मंजू, राजा बेचारा इंतजार करता होगा। बाय बाय।
1: कर दिया।
2: भाभी भाभी भाभी, वो मतलब भाभी,
1: हाँ?
2: वो आपकी बहन है ना?
1: हाँ?
2: उससे मिलना चाहता हूँ।
1: क्यों, टेनिस चैंपियन हो गया है इसलिए?
2: अरे तुम्हें कैसे मालूम भाभी?
1: अरे वही बता रही थी, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी।
2: कौन? वो मेरे खेल की तारीफ?
1: हाँ हाँ, कह रही थी दीपक बहुत अच्छा खेला।
2: वो मेरा नाम जानती है?
1: क्या तुम उसका नाम नहीं जानते?
2: नहीं, मतलब हाँ, मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ। दरअसल मंजू भाभी, बात यह है भाभी कि मैं उनके करीब से जब भी गुजरा बहुत चाह कि एक बार शील जी कहकर उन्हें पुकारूं, पर जाने क्या हो जाता है भाभी, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जुबान को जैसे लकवा मार जाता है। और फिर भाभी, अगर सबके सामने वो मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखकर मुंह मोड़ लेती है तो मेरा कलेजा फ्लैट हो जाता है। और भाभी, फिर पता चला वो तुम्हारे पास रहने लगी है तो
1: के बच्चे, तो तुझे भाभी की याद आई? चल कुछ कहेगा अभी?
2: जरूर कहूंगा।
1: तो कहना।
2: कहूं? कह तू भाभी। भाभी असल में बात यह है भाभी, भाभी मैं उनसे, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। कह दिया
1: अब जब अपने राजा के गुण गाया करती है।
2: राजा के? कहाँ के राजा के?
1: अब ये तो तुम उसी से पूछो, और अगर पूछने की हिम्मत ना हो तो दुम दबा के चले जाओ। डरपोक कहीं के, कब से मैंने सोच रखा था कि एक दिन शील और दीपक की सगाई करवाऊंगी, मगर वो निर्लज्ज शील तजा ने कहा से एक राजा नाम के लड़के को पकड़ लाई है और उसे अपने ही पास ठहराया हुआ है। निर्लज्ज कहीं की, छोड़ उसका ख्याल।
2: भाभी ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी वो तो देवी है, देवी, कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा, इतने कोमल गंभीर था, इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने
1: की। अब मैं क्या करूं, जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया, अब शील से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे?
2: पर भाभी ये राजा है कौन, कब से उसके साथ रहता है?
1: मैं क्या जानू कौन राजा है निगोड़ा, ये बात तो अभी मालूम हुई जब वो तुम्हारा टेनिस मैच देख के लौटी।
2: ओ भाभी, शील जी मुझसे कभी नहीं बोली तो क्या, बरसों साथ एक ही कॉलेज में पढ़ी है, एक बार तुम मुझे मिलवा दो, प्लीज भाभी एक बार मिलवा दो मुझे, मैं अकेले में कुछ बातें कर लूं। भाभी आखिर मैं इंसान हूँ, कोई उल्लू तो नहीं हूँ, उन्हें मालूम तो हो जाए कि मैं भी उन्हें चाहता हूँ, फिर देखूं उनका राजा मेरे सामने कैसा लगता है।
1: अच्छा सुन दीपक, मुझे ख्याल आया।
2: क्या?
1: हा? मैं शील को बुलाती हूँ, और सुन उसे शेर शायरी का बहुत शौक है, जब वो आए तो उसे बेखबर सा बनकर कोई गजल वजल सुनाने लगे।
2: तुम फिक्र ना करो भाभी, एक से एक बढ़िया शेर मुझे याद है, देखो तो सही उनका राजा मेरे आगे कैसे ठहरता है। भाभी ये राजा का नाम सुनकर तो मुझ में बजरंग बली का बल आ गया है, पर भाभी शील जी से मिलने से पहले मुझे एक झलक उनके महबूब की दिखा तो दो, आखिर मुझे मालूम तो हो जाए मुझे मुकाबला किससे करना है।
1: उस दरवाजे के पीछे शील का कमरा है। अरे उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ। देख मैं नौकर को भेजकर उसे अभी बुलवाती हूँ।
2: अच्छा,
1: तू शेर शायरी का ध्यान रखना। अरे नंदू, ओ नंदू, जा रहा शील से कह मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, जल्दी आ। अच्छा सुन, इधर आ, उधर पीठ कर ऐसे खड़े होकर कोई भड़कती हुई गजल गुनगुनाना शुरू कर दे, जैसे तुझे मालूम ही नहीं कि वो आ रही है।
2: तू छोड़ो भाभी।

0: क्या हुआ?
1: शॉक लग गया बिजली का।
0: माफ करिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप आ रही हैं।
1: वरना आप मेन स्विच शायद ऑफ कर देते।
0: जी
1: नहीं तो कयामत आ जाती।
0: जी जी मैं आपका मतलब समझा नहीं शील जी।
1: शील सुन तो, ये वही हमारा दीपक है कि वो कोई दूसरा दीपक था? मैं क्या जानू, पर हाँ शायद यही थे। ये मेरी बहन शील है दीपक
0: जी। जानता हूँ जी, जी, मतलब ये जानता तो नहीं था, पर भाई अब जान गया।
1: मैं अभी कॉफी को कहा।
0: हाँ भाभी तुम कॉफी लेने जाओ। मंजू भाभी से सुना आपको टेनिस में बहुत पसंद आया।
1: जी
0: हजार हजार धन्यवाद शील जी।
1: हजार हजार किस बात के?
0: अरे हजार हजार बातों के।
1: पर मैंने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की।
0: ओ शील जी, पर मैंने तो आपसे हजारों बातें की हैं, बहुत ख्वाब देखे हैं जिनमें आप शरीक थी। न जाने क्या क्या कहा मैंने, न जाने आपने मुझसे क्या क्या कहा, हजारों बातें।
1: हो सकता है, पर ख्वाबों का क्या?
0: एक शेर कहा है, सुना दूं?
1: जरूर।
0: हमें गिला न होता हकीकत से, ख्वाबों का अगर जरिया होता, वो सामने होते साहिल पर, जज्बातों का मैं दरिया होता। कभी मेरी तमन्ना भी सजकर

0: होता।
1: वाह वाह,
0: पसंद आया?
1: आह क्या शेर है जी, बहुत अच्छा।
0: आपको मेरा खेल पसंद आया, मेरे शेर पसंद आए, बस मैं ही पसंद नहीं आया। सुना है कोई राजा साहब है जिन पर आपकी बड़ी इनायत है, क्या ये सच है शील जी?
1: जी जी हाँ, सच तो है।
0: सच है तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ?
1: उनसे मिलकर क्या करेंगे, आप तो शायद मुझसे मिलना चाहते
0: हैं। शील जी प्लीज मजाक मत करिए, असल में बात ये है कि मैं आपसे।
1: जी जी जी क्या?
0: देखिए शील जी, अगर आप बीच में यूं ही टोकते रहे तो मैं आपसे जो आज कहने का फैसला करके आया हूँ कह ना पाऊंगा। मुझे यूं ही ये बात कहने की हिम्मत बटोरने में इतने दिन लग गए, साय के समान आपका पीछा करता रहा पर आपसे बोल न सका। अब आप प्लीज उधर गुंगू कर लीजिए ना, जिससे मैं एक बार आपसे कहकर अपना जीत हल्का कर लूं।
1: जी बहुत भारी है क्या?
0: शीन जी प्लीज, शीन जी प्लीज आप उधर देखिए ना। खैर खैर कोई बात नहीं, आप नहीं देखती तो मैं ही इधर देख लेता हूँ और कहता हूँ शील जी मैं मतलब आई मतलब मैं मतलब आई लव यू।
1: लेकिन क्यों
0: क्यों क्यों क्या राजा आपको क्यों लव करता है जी?
1: पता नहीं
0: तो आप उसे क्यों लव करती है जी?
1: क्योंकि वो मुझे बहुत लव करता है।
0: तो मैं भी तो आपको बहुत बहुत मतलब वेरी वेरी मच लव करता हूँ।
1: वो बहुत बहादुर है।
0: आपको मेरी बहादुरी पे शक है क्या?
1: पर वो बहुत वफादार बहुत लॉयल है।
0: और मैं वफादार नहीं, मेरी लॉयल्टी पे शक है आपको, तो इम्तिहान ले लीजिए, अपने राजा से एक बार मिलवा तो दीजिए, जरा मैं भी तो देखूँ मैं उससे किस बात में कम हूँ।
1: वो मेरा हर हुक्म मानता है।
0: आप मुझे भी कोई हुक्म देकर देखिए।
1: देखो
0: देखिए।
1: अच्छा देखूंगी।
0: शील जी आपके महबूब आपके कमरे में है क्या, मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ?
1: शौक से जाइए, मगर जरा संभल के जाइएगा, बड़े बड़े पहलवान भी उनसे डरते हैं।
0: आप फिक्र न करिए शील जी, वो कट लगाऊंगा कि मेरी गेंद उठाए ना उठेगी। और फिर शील जी अगर मैं मर भी जाऊँ तो क्या, कम से कम आपको मेरी बहादुरी का यकीन तो आ जाएगा।
1: तो जाइए, कमरा खुला है।
0: कमरा खुला है लेकिन लेकिन आप साथ नहीं चलेंगी क्या?
1: हाय राम, आपको मेरे साथ उसने देख लिया तो आपकी जान पर बन आएगी। वो बहुत जेलस है। अब वैसे मेरी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगी।
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, तो मैं ही जाता हूँ। आपके कमरे में जाने की इजाजत तो है ना?
1: मेरे कमरे में जाने की इजाजत तो राजा ही दे सकता है।

0: ये बात है तो हो जाए आज फैसला।
1: मेरी महबूबा के महबूब ने ललकारा है, मौत तो बेहतर है जिसे जिंदगी ने मारा है। अरे शील जी मैं जाता हूँ।
2: जाइए।
0: ओह माय गॉड, ये राजा इनका महबूब।
3: सच में शील जी
0: ये कुत्ता तो बहुत हैंडसम है,
3: बहुत बहुत ही हैंडसम, मुझसे भी ज्यादा, बहुत बहादुर है, बहुत वफादार है।
0: शील जी आपने एक काम बड़ा अच्छा किया जो इसे चेन में बांध रखा था, नहीं तो ये तो सचमुच मेरे भाई।
2: राजा राजा बी क्वाइट, चुप हो जा मेरे राजा। हाँ तो आपने देख लिया मेरे राजा को?
0: देख तो आया आपके राजा को, पर शील जी मतलब आप मतलब समझ गई ना?
2: समझ तो गई, पर आप मेरे राजा को मुझसे अलग तो नहीं करते?
0: कभी नहीं कभी नहीं, तुम मेरी महबूबा हो, वो तुम्हारा महबूब सही।
1: खुशी महबूबा की अपनी खुशी बना दूंगा, उनके महबूब के यानी कुत्ते के कदमों पे सर झुका दूंगा।
4: उनके महबूब, अभी आपने विमला रैना की लिखी ये नाटिका सुनी, निर्देशक थे लोचन बख्शी। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए सलमान खान श्रेया घोषाल की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है कुमार ने। संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का और फिल्म का नाम है किक।

0: हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों

चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान, तरन्नुम मलिक और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है कौसर मुनीर, संगीत है सोहिल सेन का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, फिल्म का नाम है पीके।

कार्यक्रम में आइए सुनिए अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत है AM तुरास का, संगीत है संजय लीला भंसाली का, फिल्म का नाम है पद्मावत। नाम एक बार फिर सुनिए, इस गीत को लिखा है AM तुरास ने।

साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर अंजान ने और फिल्म का नाम है धूम 3।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था।

0: से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। साथियों, इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारम्भ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में

0: 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता e-migrate platform से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता e-migrate platform में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची

0: विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
2: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले दो से तीन दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा

0: ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है राजकुमार।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत। गीत है नीरज का, संगीत सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है गैम्बलर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी

0: शेट्टी की रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में वो नगमा जिसे लिखा है शिवांद रिजवी ने। तर्ज है ओपी नैयर की, फिल्म का नाम है हम साया।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

साथियों कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, संगीत है रोशन का और फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में, पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं।

0: से है प्यार, रुमाल हमें देके जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रही थी। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहाँ से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ताशी और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिओ जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उसको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि ये बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डे जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिनेमा डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूंगी कि आपके मुंह से ये गाना सुनूं। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पे बुला लिया, तो एक दफे सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफे उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे, प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत। ढोल बजा

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता। समझौता गमों से कर लो
1: जिंदगी में, समझौता गमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोले किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। बोले गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द न लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं है लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनु

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

जरा सी बात कहनी थी कि प्यार है तुमसे, पर सदी बीत गई, जुबान से शब्द नहीं फूटे, नहीं कह पाए प्यार है तुम्ही से। पलकों की पंखड़ी में ही बंद रही प्यार की पोटली, शायद सच्चे प्यार की यही है परिभाषा। वो प्यार ही क्या जिसका बार बार बखान किया जाए, वो याद ही क्या जिससे प्यार ना हो, वो याद ही क्या जो हर वक्त दिल के करीब ना हो।

छाया गीत कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलते हुए रात से गुफ्तगू, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं। आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में। बोल हैं राजा हसन, राजा मेहदी अली खान के, संगीतकार हैं मदन मोहन, फिल्म का नाम है नीला आकाश।

अभी हमने सुना नीला आकाश फिल्म का ये गीत, और आइए अब सुने अगला गीत आशा भोसले के स्वरों में। प्रेम धवन है गीतकार, रवि हैं संगीतकार, और फिल्म का नाम है एक फूल दो माली।

आइए सुने अगला गीत, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में बना, बोल हैं हसरत जयपुरी के और स्वर हैं मोहम्मद रफ़ी के। फिल्म का नाम है हम राही।

आइए सुने अगला गीत आशा भोसले के स्वरों में। गीतकार हैं असद भोपालपुरी, संगीतकार हैं गणेश और फिल्म का नाम है ठाकुर जरनेल सिंह।

फिल्म संगीत में आइए सुने अगला गीत छैला बाबू मूवी से। क्षमा कीजिए, फिल्म का नाम है श्री 420।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। प्रस्तुत है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचार पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साड़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश

0: all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. The U.S. Supreme Court has struck down President Donald Trump's executive order aimed at ending birthright citizenship, reaffirming the long-standing interpretation that nearly everyone born in the United States is automatically granted U.S. citizenship. In the FIFA World Cup 2026, the match began Ivory Coast and Norway in Underway in Texas, United States. And that's the end of the news bulletin.
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब समाप्त होती है। कल सवेरे 5:51 पर हमारी पहली सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।